मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और FM बैंड 103.5 MHz पर। 6 बजने वाले हैं अब हिंदी समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के बाद FM बैंड 103.5 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आज का चिंतन, जीवन का न तो भविष्य में है कुछ और न ही अतीत में। जीवन जीना है तो केवल वर्तमान में जियो। ये था आज का चिंतन और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी। वो आदि भी है, वो अनंत भी। लेकिन प्रश्न ये कि ईश्वर को महसूस कैसे किया जाए। ईश्वर को भाव से ही पाया जा सकता है। ईश्वर भगवान भाव को ही ग्रहण करते हैं। कहा भी गया है कि भाव के भूखे हैं भगवान। भाव से भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे ते भव से बेड़ा पार है।

जब भी ईश्वर के समक्ष हम प्रार्थना करें, हमारा भाव यही हो कि हे ईश्वर, निवेदन हमारा है लेकिन इच्छा आपकी है, और निवेदन और इच्छा के बीच जो शब्द दिल से निकलते हैं वही प्रार्थना बन जाते हैं। प्रार्थना का एक और अर्थ भी है, विश्वास और निकटता। हम जिस भी शक्ति की प्रार्थना कर रहे होते हैं उसकी निकटता हमें मिलने लगती है। प्रार्थना डोर बनकर उस परम शक्ति को हमसे जोड़ देती है।

आप सभी मानेंगे कि जीवन की परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं रहती, सुख दुख आते जाते रहते हैं। सभी सुखी जीवन चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में विपत्तियां, बाधाएं, अवरोध न हों, तो फिर उनको विजय प्राप्त करने का सुख कैसे प्राप्त होगा? और इसके लिए जरूरत है उस परम पिता परमात्मा में विश्वास, धैर्य और मानसिक शांति बनाए रखने की।

मानव जीवन एक महान यात्रा है। तरह तरह के उतार चढ़ाव के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। यात्रा में जैसे इंसान आनंद पाना चाहता है, उसी तरह जीवन में भी अनंत आनंद पाने के लिए प्रभु भक्ति की आवश्यकता होती है।

आप सुन रहे थे भक्ति संगीत के दैनिक प्रस्तुति वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुने श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना

थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: श्रीकांत पारगांवकर और वाणी जयराम के स्वर में आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का धारावाहिक प्रसारण। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आइए अब सुने कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों राम राम। भाइयों कृषि की बात हम आज जिक्र करेंगे मूली की काश्त इस बारे में। और ये देख ले हैं कि भाई जो भी अपना जिन किसान भैया ने फिलहाल सब्जी फसल लगा रखी है और भाई दिनचर्या का अपना भाई कितने तुड़ाई का काम है कितने छटाई का काम है और भाई बिल्कुल रात बरात ने मंडीकरण भी जाना पड़े है भाई ने दो दो तीन तीन बजे उठ के अपने जो है मंडीकरण के लिए भी तैयार होना पड़े है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेहनत का काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन किसान भाई का जब सब्जी फसलों का जकराव है तो ये देखे हैं कि जो दिनचर्या में सब्जी फसलें किसान भाई उगाओ है हर रोज़ तुड़ाई है उसकी भाई कितने न कितने उसके में स्प्रे लगानी है छटाई मंडीकरण चालदा रहा है तो थोड़ा है इस टाइम के ऊपर आंधी रड़वा मी बारिश ईसा हो जाए है जो थोड़ा बेमौसम का हो है ख़ास तौर पर उसमें ज़्यादा आंधी के कारण ही दो चार दिन तक अंधड़ भी तेज आया था आंधी भी तेज थी काफ़ी नुकसान भी देखने में आया था तो कितने फल किसान भाई का जड़ गया है और कितने भाई तुड़ाई में देर हो गया है कितने मंडीकरण नहीं होने पाता कितने रास्ते ब्लॉक हो गया है कई जगह देखने में आया था तो कई जगह भाई टमाटर बाहर से आ रहा था तो इस वजह से महंगा हो गया क्योंकि ये दिनचर्या में सब्जी फसला में ऐसा काम हो भाई कितने तुड़ाई निराई गुड़ाई पानी पात कई बातें इसमें हो जाए तो भाई थोड़ा हा हरेक

0: चीज की हमने चाहे वो रूपरेखा के ले हैं चाहे कोई योजनाबद्ध तरीके से हम खेती के ले हैं, जब जाके हम थोड़ा हा ठीक ढंग से मुनाफा ले पाऊंगे बिल्कुल एक योजना तरीके से। सबसे ज़रूरी है कि भाई इसमें लेखा जोखा हम ज़रूर लेकर रख के चलने, क्योंकि जब तक हमारी लागत है मुनाफा है हम ये देखेंगे कि भाई सही तरीके से हमारे समझ में नहीं आएगा कि भाई हमने रोज़ का जो लेखा जोखा हो तैयार नहीं कराया, भाई आज कितनी हमारी लागत आई है, कितना तुड़ाई पर खर्चा लग गया है, कितना स्प्रे पानी पर लग गया है, कितना निराई गुड़ाई पर लग गया है, और हमने शुद्ध मुनाफा शुद्ध लाभ की मिला है। जब तक हम ये पूरी जानकारी लेखा जोखा नहीं रखेंगे, जब तक हमारी खेती चाहे वो सब्जी फसला की हो या फिर कोई अन्य जो भी हम परंपरागत फसलें उगा रहे हैं या फिर कोई अन्य कृषि सहायक धंधे हम काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ में लेखा जोखा बिल्कुल ज़रूरी है, तो ये हम रख के चलें। मूली की जड़ ती बात आव है भाई, मूली में पूसा चेत की है, मूली की किस्म ने गर्मी में लगाया जा सके है, यदि आपने इसकी बिजाई पहले कर रखी है तो भाई फसल की सिंचाई हमने मौसम ने देख दिया, यानी मिजाज देखें भाई पानी बरसात हो रही है तो काम चल जाएगा, वरना हमने भाई पानी भी देना पड़ेगा। निराई करें तथा जड़ा पर मिट्टी हमने चढ़ानी है, क्योंकि अगर जड़ बाहर निकल जाए तो फिर वो इसकी कोई रंग बद्दा हो जाए, इसका में पकड़ तावड़ी लग जाए या पूरी वजन नहीं ले पाती, ठीक ढंग से बैठ नहीं पाती, तो इसकी गुणवत्ता खराब हो जाए, इसलिए भाई टाइम पर अपने मिट्टी बीच में चढ़ानी पड़ेगी। इसकी फसल बिजाई के लगभग भाई 40 दिन के बाद में तैयार हो जाए है, और चेप का आक्रमण अगर हो जाए वह है तो लक्षण हम देखें फसल के, फिर उसके हिसाब से हमने इसका उपचार करना है। अगर चेप का आक्रमण किसान भाई ने दिखाई देवे है तो 250 तो 400 मिलीलीटर इसमें डाइमेथोएट है या 30% ताकत की दवाई रहेगी। इसके अलावा इसमें 250 तो लेके 400 लीटर पानी में मिला कि प्रति 1 किलो के हिसाब से हमने छिड़काव कर देना है। और ये देखें हैं कि जड़ा में अगर नरम अवस्था में या फिर कड़ी होने से पहले आप उखाड़ लें, क्योंकि उसने पकना हम नहीं देवें, और जब तक वह पक जाएगी तो किसान भाई ने बाजार भाव ठीक नहीं मिलेगा। बिल्कुल कच्ची अवस्था में उसने मालूम हो जाए किसान भाई ने अपनी मंडीकरण के लिए भी उपजाऊ ठीक हो रही है, और दो की बाजार में बेचें और नई बिजाई भी इस महीने में कर सके हैं, क्योंकि जो पूसा चेत की है लगभग मूली का हमारे पास ऐसा हो रहा है कि वैरायटी किस्में थोड़ा खेत का बढ़िया तरीके से हम तैयार कर लिए हैं, तो 12 मास जो है मूली उगाई जा सके है।
1: आपने सुनी कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब समाचार होंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: इयं आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य यात्रावधौ स्वकीय प्रवासस्य चरमे सोपाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः रात्रौ पेरिस नगरं सम्प्राप्तवान्। पेरिस नगरे आगमन समये विश्रांति निलये एकत्रिताः भारतीय समुदायस्य सदस्याः उत्साहपूर्वकं तदीय भव्यं स्वागतम् अकुर्वन्। अद्य प्रधानमंत्री प्रमुख विपणीनां मुख्य कार्यकारिभिः सह चर्चां करिष्यति। तदनन्तरं सः यूरोप महाद्वीपस्य प्रमुख प्रौद्योगिकी मञ्चे विवाटेक् शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति, तत्र च स्वसंबोधनं प्रदास्यति। सायंकाले असौ एकस्मिन् सामुदायिक कार्यक्रमे भारतीय प्रवासिभिः सह संवादं विधास्यति। G7 देशैः वैश्विक स्थिरतायाः सुरक्षा सहयोगस्य अथ सीमापार संघटित अपराध निवारणस्य उद्देश्येन विभिन्नाः प्रमुखाः घोषणाः विहिताः। मुख्य वक्तव्ये नेतृभिः अमेरिका ईरान देशयोर्मध्ये संजातं सन्धिनिश्चयम् अभिनन्दितम्। अन्य घोषणापत्रे G7 देशैः मादक द्रव्यस्य अवैध कार्यं निरोद्धुं संकल्पो विहितः। अस्मिन् अभियाने ब्राजील दक्षिण कोरिया देशौ अपि सहमतिं प्रदर्शितवन्तौ। फ्रांस देशस्य एवियन नगरे चलायमाने G7 शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वहितकारी सतत आर्थिक विकासः इत्याख्ये मुख्य विषये आयोजितायां महत्वपूर्ण कार्यगोष्ठ्यां भागं भजते। सत्रेऽस्मिन् G7 देशाः सहभागी राष्ट्राणि अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य OECD इत्यस्य च प्रतिनिधयः उपस्थिताः सन्ति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य मध्यप्रदेशस्य ओडिशायाः च पञ्चदिवसीयायां यात्रायाम् अस्ति। प्रथमदिवसे सा मध्यप्रदेशस्य बैतूल नगरे आध्यात्मिक जागृत्या जनजातीय समाजस्य सशक्तिकरण कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। द्वितीय दिवसे सा ओडिशायाः रायरंगपुरे चिकित्सा शिविरस्य ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनायाः च उद्घाटनं विधास्यति। तृतीय दिवसे राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह पहाड़पुरे कौशल केन्द्रस्य निरीक्षणं करिष्यति, सहैव रायरंगपुरे जनसभां च संबोधयिष्यति। चतुर्थ दिवसे सा जून मासस्य 21 दिनांके जबलपुरे अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसोत्सवे भागं ग्रहीष्यति, सहैव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे अध्यक्षतां विधास्यति। यात्रायाः चरमे सोपाने सा क्यूनो राष्ट्रिय उद्याने सहरिया जनजातीय सदस्यैः चीता अन्वेषकैः च सह संवादं विधास्यति। संयुक्त राष्ट्र संघस्य खाद्य संस्थाभ्यां खाद्य एवं कृषि संघटनेन अथ विश्व खाद्य कार्यक्रमेण च विज्ञापितं यत् आगामिषु मासेषु युद्ध जलवायु परिवर्तन धन न्यूनता कारणात् विश्वस्य 13 प्रमुख क्षेत्रेषु बुभुक्षा संकटं अधिकं गभीरं भविष्यति। संयुक्त प्रतिवेदनस्य अनुसारं सम्प्रति जगति 66.2 कोटि जनाः तीव्र खाद्य असुरक्षया पीडिताः सन्ति। अस्यां सूच्यां सुडान, दक्षिण सुडान, यमन, फिलिस्तीन, नाइजीरिया, सोमालिया चेत्यादयः देशाः अत्यधिक संकटग्रस्ताः सन्ति। प्रतिवेदने चिन्ता प्रदर्शिता यत् 20-22 परं मानवीय सहायतायै प्राप्यमाणं धनं 60% न्यूनं जातम्। WFF संस्थायाः कार्यवाहक निदेशकः कार्ल स्काउ महोदयः अवोचत् यत् यदि शीघ्रं किमपि कार्यान्वयनं न क्रियते तर्हि कोटिशः जनाः दुर्भिक्षस्य गर्ते पतिष्यन्ति। हॉकी क्रीडायां नीदरलैंड देशस्य राइडरहेम नगरे प्रचल्यमाणायाः FIH प्रो लीग स्पर्धा मालिकायाः द्वन्द्वे भारतीय पुरुष हॉकी दलेन जर्मनी दलं 3-1 इत्यांकांतरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। इसमें ऑनलाइन सुरक्षा बढ़ाने, डीप फेक और बच्चों के शोषण जैसी चुनौतियों से निपटने पर जोर दिया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिसिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ प्रो लीग हॉकी मैच में भारतीय पुरुष टीम ने मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा और नीलकांत शर्मा ने गोल किए। ये मनप्रीत सिंह का 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। उन्होंने भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया है। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले योग संगम कार्यक्रम के लिए देश भर में 1,70,000 से अधिक आयोजकों ने पंजीकरण कराया है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि योग संगम स्वास्थ्य के माध्यम से एकता का उत्सव है। इसके तहत देश भर में हजारों स्थानों पर लोग एक साथ योग करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य योग को जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज रात 9:30 पर कार्यक्रम कंट्री वाइड, रात 9:45 पर कार्यक्रम इनसाइट्स, दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला के अंतर्गत विरासत आप सुनेंगे और इसके वार्ताकार होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। शाम 6:30 पर प्रसारित होगी साप्ताहिक समीक्षा, जिसे हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

जिसका विषय रहेगा योग के शारीरिक व मानसिक लाभ। वार्ताकार होंगे श्री परविंदर सिंह। हमारी दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे प्रसारित होगी प्रातः 7:30 पर। युवा संसार कार्यक्रम में शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम मेरी पसंद।

खेत खलिहान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर आज चर्चा का विषय रहेगा सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण। शाम 6:20 पर कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर महक के साथ बातचीत का विषय होगा गवार की सब्जी वैदाने के लिए काश्त। इसके अतिरिक्त चर्चा रहेगी धान की नर्सरी तैयार करना। शाम 7:00 ग्रामीण संसार कार्यक्रम में सुनिएगा श्री देवेंद्र खुराना के साथ बातचीत, विषय है योग क्रियाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव।

और अब संगीत के कुछ आकर्षण। लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर आज कलाकार होंगे रतनलाल। हेलो रोहतक, फिल्म संगीत की ये प्रस्तुति लेकर आएंगे प्रातः 9:00। फिल्म संगीत आप दिन में 1:10 पर और शाम 7:45 पर भी सुन सकते हैं। मन चाहे गीत सुनेगा रात 10:00 और एक फिल्म से कार्यक्रम में रात 9:15 पर आज आप सुनेंगे आए दिन बहार के फिल्म से कुछ गीत।

0: आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुने विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत ये बातचीत श्री परविंदर सिंह के साथ। विषय है योग के शारीरिक व मानसिक लाभ।
1: विविधा कार्यक्रम में आज योग पर हमें बातचीत करेंगे, और क्योंकि ये 21 जून को मनाया जाता है और अपने योग के बारे में जानकारी देने खातिर अपने आ रहे स्टूडियो में परमेंद्र सिमार जी। आप आए हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैमतिया, वहाँ DP हैं। तो परमेंद्र जी, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है?
2: ये साल का जो सबसे बड़ा दिन है जी, और ये एनर्जेटिक है माना गया इसको।
1: अच्छा, हाँ। साल का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए इसको ये कहा जाता
2: है।
1: चलो ठीक से। और योग कितने प्रकार के हैं?
2: योग वैसे तो मुख्य प्रकार से तीन प्रकार के हैं।
1: तीन प्रकार
2: गीता में, जैसे कर्म योग है, भक्ति योग है
1: जी,
2: ज्ञान योग है
1: जी,
2: लेकिन इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे राजयोग है
1: जी,
2: राजयोग है, जनाना योग है
1: जी,
2: लय योग है
1: जी।
2: तो योग को मैं से वो नहीं कर सकते फिक्स ये कितने टाइप का है, लेकिन मुख्य रूप से तीन प्रकार का है
1: जी। अच्छा, कि ये सूर्य नमस्कार की बात कराम जाते हैं, इसके कितने चरण हैं?
2: सूर्य नमस्कार में जी 12 चरण होते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी 12 चरण हैं। और सूर्य नमस्कार ये मानिए कि इस पर स्टडी हो चुकी है कैलिफोर्निया में भी।
1: अच्छा,
2: तो ये सबसे एनर्जेटिक व्यायाम है, इसमें योग भी आसन भी
1: जी,
2: और ये सारा शरीर का एक संपूर्ण व्यायाम बोलिए इसको,
1: सूर्य नमस्कार
2: को।
1: अच्छा,
2: हाँ जी बहुत ही फायदेमंद है ये
1: जी। और ये अष्टांग योग है।

0: उसके अंग भी बताओ तो फिर
1: हाँ
0: भी,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: अष्टांग
0: क्योंकि
1: योग
0: आज
1: में,
0: है ना, देखो हमें योग पर बात कर रहे हैं तो पूरा विस्तार तो चाहिए कि हमारे जो श्रोता है पूरा
1: हाँ
0: विस्तार तो जाने उसके बारे में।
1: तो देखो योग के बारे में मैं बताऊँ आपको, योग का मतलब होता है मेन जोड़ना,
0: अच्छा
1: संयोजन करना, मिलाना,
0: जी
1: जैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाना।
0: जी
1: और जैसे हम किसी अच्छे कर्म में लगते हैं तो कर्म योग हो गया हमारा,
0: जी
1: ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं तो ज्ञान योग हो गया,
0: जी
1: और अगर हम अपने आप को प्रभु से समर्पण कर देते हैं तो भक्ति योग हो गया।
0: अच्छा
1: हाँ जी, तो महर्षि जो पतंजलि है उन्होंने योग को 8 भागों में बांट दिया।
0: जी
1: तो उन मेन क्या था, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया, जैसे मकान बनाते हैं ना, जैसे तो
0: अच्छा
1: उसने यम बेस है हमारा, यम
0: अच्छा
1: नियम,
0: जी
1: आसन,
0: जी
1: प्राणायाम,
0: जी
1: प्रत्याहार,
0: जी
1: धारणा, ध्यान और लास्ट की स्टेज है समाधि।
0: समाधि।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: तो ये उसने चरण बना दिए इसके। भाई योग, अगर आप समाधि तक पहुंचना चाहते हो तो
0: जी
1: पहले आपको यम का ध्यान करना पड़ेगा। यम के
0: अच्छा
1: भी 5 भाग बता दिए।
0: जी
1: अब यम बोलेंगे, यम क्या है?
0: जी
1: सेल्फ कंट्रोल है यम, अपने आप
0: अच्छा
1: पर कंट्रोल करना।
0: जी
1: तो उसमें जैसे सत्य है, अस्तेय है, अहिंसा है,
0: अच्छा
1: हाँ, और इसी तरह मतलब उसके 5 भाग
0: जी
1: हैं यम के।
0: यम के,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: इसमें जिस तरह प्राणायाम है और आसन है,
1: हाँ जी,
0: इसमें ये इसके बारे में बता, इनका अंतर भी बता दो क्यों। हाँ
1: अच्छा जी, आसन का मतलब है, आसन से क्या होता है, जो शरीर का एक किस्म से पोस्चर,
0: अच्छा
1: अपनी जो स्थिति है शरीर की,
0: जी
1: वो हम उसको बैलेंस और उसको मतलब एक प्रॉपर वे में करते हैं
0: जी
1: ताकि हमारा शरीर किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार हो जाए।
0: जी
1: यानी कि हम शरीर को इसमें गठीला बनाते हैं और लचीला बनाते हैं साथ साथ,
0: जी
1: और सारी चीज़ों में अलग अलग, जैसे आसन है
0: जी
1: तो एक पर्टिकुलर पोजिशन है, पोस्चर है,
0: अच्छा
1: हाँ, वो सहज स्थिति में उसको हम अडप्टेशन करते हैं, शरीर के कंडीशनिंग करते हैं किस्म से।
0: अच्छा
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी, और प्राणायाम में क्या होता है, हम प्राण के ऊपर, प्राण का जो आयाम है, प्राण चलता है हमारे शरीर में,
0: जी
1: तो श्वास का और मन का सीधा सीधा संबंध है।
0: अच्छा अच्छा
1: तो अब अगर हम सांसों को कंट्रोल करेंगे तो
0: जी
1: हमारा मन ऐटोमेटिक जो है ना, सही उसमें आ जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा।
0: कंट्रोल हो जाएगा,
1: हाँ
0: यानी
1: जी,
0: सांसों पर करेंगे तो मन भी कंट्रोल में हो
1: मन,
0: जाएगा
1: हाँ,
0: हमारा।
1: तो इसमें आसन में क्या है, मेनली फोकस होता है हमारी बॉडी फिजिक पर,
0: अच्छा
1: और जो हमारा प्राणायाम है
0: जी
1: इसमें साथ साथ हम मन के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल करते हैं और शरीर के ऊपर भी करते हैं।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: यानी
1: जी,
0: प्राणायाम से हम मन पर भी शरीर पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है परमेंद्र जी, हम पूछना चाहेंगे आपसे,
1: हाँ जी, हाँ,
0: जो तनाव है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है और चिंता हो रही है, उसके लिए भी क्या कोई योग है।
1: देखो योग का मतलब है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना,
0: अच्छा
1: तो ये तो सारे उसी के पार्ट हैं। जब हम योग को आत्मा से, परमात्मा से जोड़ लेते हैं
0: जी
1: तो कोई कार्य नहीं बचता।
0: जी
1: मेनली हमारे शरीर के अंदर 3 पॉइंट होते हैं, पोजिशन होती है,
0: जी
1: 3 भागों में बटा हुआ है ये।
0: शरीर हमारा
1: हाँ, एक
0: जी
1: हमारी पूरी बॉडी होगी, फिर एक फिजिकली हो गया हमारा शारीरिक,
0: जी
1: एक मानसिक और
0: मानसिक
1: एक भावनात्मक,
0: जी
1: 3 चीज़ें हैं।
0: अच्छा
1: तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसके ऊपर मतलब योग से हम फायदा नहीं ले सकते।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ
0: यानी
1: हाँ
0: जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें हम फायदा उसका ना ले
1: फायदा नहीं ले
0: सके।
1: सकते।
0: अच्छा
1: जैसे आप बीमारियों की बात करो,
0: हाँ
1: तनाव की बात करो, डिप्रेशन है,
0: हाँ
1: OCD, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कोई
0: हाँ
1: भी गलत आदत है उसको
0: जी
1: छुड़वाना है,
0: अच्छा
1: तो इसका ये योग सबसे बहुत ही अच्छा उपाय है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, लेकिन योग उसकी है ना, उसकी देख रेख में होना चाहिए, ये
0: जी,
1: योग
0: यानी
1: प्रशिक्षक
0: जो
1: की देख रेख
0: विशेषज्ञ
1: में।
0: है उसकी देख रेख में होनी
1: हाँ,
0: चाहिए। जी
1: क्योंकि
0: अच्छा
1: इसमें जैसे देखो, अब तनाव को दूर करने के लिए इसमें मेन क्या है, ब्राह्मी प्राणायाम है, अनुलोम
0: जी
1: विलोम है,
0: जी
1: आराम से हम इसको अनुलोम विलोम करेंगे तो हमारा वात पित्त कफ
0: अच्छा
1: तीनों चीज़ों को बैलेंस करता है ये अनुलोम विलोम,
0: जी
1: और 3 ही प्रकार की हमारे अंदर बीमारी होती हैं।
0: जी तो परमेंद्र जी आपसे एक बात और पूछना चाहूँ, जिस तरह ये मोटे हैं आदमी, क्योंकि आजकल मोटापा भी
1: हाँ जी,
0: एक बहुत
1: बिल्कुल,
0: बड़ी समस्या होती जा रही है पूरी दुनिया में,
1: सबसे बड़ी बीमारी है
0: तो
1: मोटापा अपने
0: इसके
1: आप
0: लिए
1: में।
0: भी क्या कोई योग है और वो कौन कौन से योग कर सके हैं।
1: देखो, मोटा आदमी है तो उसको पहले हमने ये देखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर वो मोटा है तो उसके अंदर और भी बीमारी पाएंगी साथ में,
0: अच्छा
1: जैसे मोटा है तो BP की संभावना बढ़ जाएगी,
0: जी
1: ठीक है,
0: जी
1: और भी उसको शुगर की समस्या बढ़ जाएगी,
0: जी
1: ठीक है। तो
0: जी
1: उस स्थिति में हमने इसको ये पहले ध्यान करना पड़ेगा कि इसको पहले तो देखना पड़ेगा ये खाली मोटा है, ज़्यादा वेट
0: हाँ
1: है,
0: मोटापा
1: या
0: कारण
1: और
0: के
1: बीमारी भी
0: इसका।
1: साथ में आ गई इसके,
0: अच्छा
1: उसके अनुसार ही हम उसको योग कराएंगे।
0: जी
1: जैसे मोटा आदमी है तो उसको हम ताड़ासन वगैरह है, त्रिकोणासन है, और उसको कपालभाति प्राणायाम भी करा सकते हैं, अनुलोम विलोम करा सकते हैं हम।
0: अच्छा
1: अनुलोम विलोम ऐसा प्राणायाम है हम जिसको किसी को भी करवा सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, तीनों चीज़ों पे, वात पित्त कफ, ये कंट्रोल करता है।
0: तो एक बात और चाहेंगे डीपी साहब आपसे पूछना, जिस तरह छोटे बच्चे हैं क्या वो भी कर सकते हैं, कितनी उम्र तक के बच्चे कर सकते हैं?
1: बस वही बात है, जैसे हम डॉक्टर मेडिसिन देता है ना
0: जी,
1: छोटे बच्चों के लिए डोज अलग है, तो उन इसी प्रकार से योग प्रशिक्षक के अनुसार देखेगा कि इनकी कैपेसिटी कितनी है और इनको कौन सा योग कराना चाहिए।
0: अच्छा,
1: तो वो अलग अलग है, योग सबके लिए है।
0: और बड़े आदमी
1: बड़ा भी कर सकता
0: उम्र में कितने तक, मान लिया 80-90 साल का हो जाए और आदमी, वो भी
1: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: अच्छा अच्छा, चलो ये तो बहुत बढ़िया।
1: जैसे हम सांस लेते हैं नॉर्मल, अनुलोम विलोम प्राणायाम है एक
0: जी,
1: नाड़ी शोधन क्रिया भी बोलते हैं, प्राणायाम बोलते हैं उसको
0: जी,
1: तो उसमें क्या क्या होता है, हम एक नाक से सांस लेते हैं दूसरी से छोड़ देते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: दूसरी से लिया दूसरी से छोड़ दिया, उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस होता है
0: जी,
1: सूर्य सवर और चंद्र सवर दोनों का बैलेंस हो जाता है और सारी बीमारियां उससे गायब हो जाती है। यहाँ तक 90% बीमारियां अकेले अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से गायब हो जाती है।
0: अच्छा, लगभग सारी 90% बीमारियां चली जाती
1: है, 90% बीमारियां।
0: अच्छा चलो जी, ये तो बहुत बढ़िया है फिर तो। अच्छा, एक चीज़ और है जी, जिस तरह क्या, क्योंकि आजकल ऑफिस की परंपरा बहुत ज़्यादा, सर्विस बहुत ज़्यादा लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: क्या ऑफिस में बैठ के भी कोई आसन कराया जा सकता है?
1: बिल्कुल किया जा सकता है जी, क्योंकि इसमें क्या है, मेन हमारा फोकस है हमारी कमर, गर्दन
0: जी
1: और कंधे, ये सीधे होने चाहिए
0: जी।
1: नीचे हम ऐसे कोई नहीं है, जैसे हम नीचे बैठ के भी सुखासन में, पद्मासन में, सिद्ध पद्मासन में, और हम चेयर पे बैठ के भी, बस इतना करना हमने बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स, लेकिन सीधा
0: सीधा
1: सीधा रखना है
0: जी।
1: जैसे हमारा शरीर है ना, वो कमर, गर्दन और कंधे सीधे होने चाहिए
0: जी,
1: और उससे उस पर बैठ के भी हम डीप ब्रीथ कर सकते हैं
0: जी,
1: डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं हम।
0: अच्छा,
1: कुर्सी पे बैठ के भी सांसों पे ध्यान केंद्रित करना।
0: तो एक बात और है जी, ये किस टाइम करे जा सके, मतलब खाना खाने के बाद भी करे जा सकते हैं?
1: खाना खाने के बाद कुछ कुछ ऐसे हैं, जैसे एक तो आसन ऐसा है,
0: अच्छा,
1: वज्रासन,
0: वज्रासन,
1: उसको आप 24 घंटे में कभी भी कर सकते हो
0: जी।
1: और उसका नाम वज्रासन क्यों है, क्यों वज्रासन करते हैं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ से कट ऑफ हो जाता है।
0: अच्छा,
1: इसका साइंटिफिक रीजन है, कहीं तो वैसे तो बोल देते हैं वज्रासन में शरीर कैसे वज्र जैसा बनेगा
0: जी,
1: लेकिन उसमें क्या होता है, हमारा जो ब्लड पैरों की तरफ फ्लो करना कम हो जाएगा।
0: अच्छा,
1: और वो ब्लड फिर पेट में जाएगा
0: जी,
1: और पाचन क्रिया को, हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को दुरुस्त करेगा
0: जी,
1: अच्छा करेगा।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए हम जो भी कुछ खाएंगे वो पचेगा
0: जी,
1: और वो पचेगा तो फिर हमारा शरीर वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा।
0: नहीं, खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं?
1: बिल्कुल तुरंत बाद कर सकते हैं आप, सुबह उठते ही करो, सोने से पहले करो, किसी टाइम भी करो, वो एक स्थिति है पोस्टर बैठने का
0: जी,
1: तो वज्रासन हम कभी भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है।
0: अब जिस तरह आपने पीछे बात करी थी बीपी की और शुगर की, क्योंकि आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे कमर दर्द है या माइग्रेन, इतना ज्यादा हो रहा है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनके लिए भी क्या कोई आसन है या योग है कोई, इस तरह बताओ।
1: बीपी, शुगर और थायराइड,
0: अच्छा,
1: तीन बीमारियां ऐसी हैं, हमारे तीन सेंटर हैं शरीर में
0: जी।
1: जैसे मणिपुर चक्र है, इसमें हमारा अग्नाशय होता है, पेनक्रियाज बोलते हैं इंग्लिश में
0: जी,
1: वो क्या करते हैं, इंसुलिन छोड़ती है
0: जी,
1: तो हमारे इंसुलिन में कमी आ जाती है कहीं ना कहीं
0: जी,
1: वो इंसुलिन जो भी हम खाते हैं मीठा उसको ऊर्जा में बदलता है
0: जी,
1: तो इंसुलिन कम बनेगा, इंसुलिन कम बनेगा तो हमारे अंदर शुगर हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि वो भोजन जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट बदला नहीं गया
0: जी,
1: तो मीठा अंदर ही घूम रहा है हमारे अंदर, ब्लड में भी, सेल में भी, मसल में भी
0: जी।
1: तो इसके लिए जैसे खाली शुगर है उसको, उसके लिए कपालभाती,
0: कपालभाती,
1: यस, अनुलोम विलोम
0: जी,
1: दो प्राणायाम
0: जी,
1: और एक मंडूकासन,
0: मंडूकासन,
1: मंडूकासन, उसमें हम आगे झुकते हैं मुट्ठी बंद करके, नाभि के दोनों ओर लगा के,
0: अच्छा अच्छा,
1: आगे झुकते हैं तो उस पैनक्रियाज पे असर पड़ता है
0: जी,
1: और वो हार्मोन्स जो हमारा है ना इंसुलिन, उसको सिक्रेशन करना शुरू कर देती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो आगे सांस छोड़ के झुकते हैं उसमें, तो मेन इसमें है कपालभाती, अनुलोम विलोम, और जिस पे भी पेट पे असर पड़ता है, जैसे मंडूकासन आगे झुकने वाला हो गया
0: जी,
1: वक्रासन हो गया जिसमें मुड़ाव होता है शरीर का
0: जी,
1: तो ये है कुछ इसमें मेन आसन है, इसमें है कपालभाती, अनुलोम विलोम, शुगर में।
0: अच्छा,
1: और बीपी के लिए, जैसे बीपी आ गया
0: जी,
1: तो बीपी में हम कपालभाती नहीं कर सकते।
0: अच्छा,
1: हाँ, बीपी में कपालभाती कई बार बढ़ जाता है
0: जी,
1: और करें भी गए तो चिकित्सक की देखरेख में आराम से श्वास छोड़ना होता है उसको बार
0: जी।
1: हाँ, जैसे आपके अंदर बीपी है तो उसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हो।
0: अच्छा,
1: और श्वास लेके छोड़ सकते हो धीरे धीरे।
0: जो ये अनुलोम विलोम आपने बताया, तो
1: ये तो
0: ऐसा
1: है, लंबे सांस, गहरे सांस लेना आराम से
0: जी,
1: ज्यादा फोर्सफुल नहीं खींचना
0: जी,
1: आराम से सांस लेना, आराम से छोड़ना, लंबे गहरे सांस
0: जी,
1: और अनुलोम विलोम
0: जी,
1: और ओम का उच्चारण है, जैसे भ्रामरी है हमारा
0: भ्राम,
1: ये तीन चार तो ऐसे हैं, ये लगभग हम किसी भी बीमारी में कर सकते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो
0: जी,
1: चाहे थायराइड हो।
0: आजकल एक और चीज देखते हैं जो स्ट्रेस है ना, आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, हर आदमी में स्ट्रेस हो रहा है,
1: हाँ।
0: क्या उसके लिए भी कोई जिस तरह प्राणायाम है या आसन कोई है इस तरह?
1: हाँ।

0: जो
1: मैंने
0: कम करा जा
1: आपको
0: सके।
1: पहले भी बताया था कि
0: जी
1: ऐसा ऐसा कुछ कोई चीज़ नहीं है जिसमें प्राणायाम जो हमारा योग है वो लाभदायक ना हो,
0: जी
1: चाहे बीमार हो, चाहे मोटा हो आदमी हो, चाहे लेडीज हो जेंट्स हो,
0: जी
1: चाहे बच्चे हों छोटे बड़े हों।
0: जी
1: तो इसके लिए कोई ऐसा हमारा क्षेत्र नहीं है जहाँ ये योग कारगर नहीं है।
0: अच्छा
1: हाँ जी, क्योंकि इसमें देखो आप इसकी परिभाषा से देखिए,
0: जी
1: योग का मतलब ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ना हो गया,
0: जी
1: जो हमारा मेन लक्ष्य होता है जीव का। तो जब
0: जी
1: वो आत्मा को परमात्मा से मिलन करा सकता है योग, तो ये बीमारियाँ और ये हमारी स्ट्रेस वगैरह नॉर्मल चीज़ें हैं उसके लिए योग में।
0: अच्छा
1: बस उसको जानकारी पूरी होनी चाहिए, मेन बात ये है।
0: हाँ, तो ये जिस तरह मान लिया स्ट्रेस के लिए बताया, कोई इसमें कोई अलग
1: हाँ,
0: तरह
1: स्ट्रेस के लिए एक पहले अनुलोम विलोम,
0: है? अच्छा
1: एक ध्यान,
0: जी
1: जैसे हमारा चरण था ना ध्यान योग में, अष्टांग
0: जी
1: योग में ध्यान, और लास्ट में था समाधि।
0: जी
1: तो ध्यान क्या है, हम आराम से पहले अनुलोम विलोम करें, डीप ब्रीथ लें, आराम से सांस लें लंबे और लंबे सांस छोड़ें,
0: जी
1: और फिर बिल्कुल शांतचित होकर बैठ जाएं, और
0: जी
1: अपने यहाँ आज्ञा चक्र पे है ना दोनों आंखों के बीच में,
0: जी
1: यहाँ ध्यान को केंद्रित करें
0: जी
1: और अपने श्वासों को देखें, आती जाती हुई श्वास पर ध्यान केंद्रित करें
0: जी
1: और आराम से सांस लें और आराम से छोड़ें, और अपने अपने ध्यान को जो है ना सांसों पर रखें या अपने विचारों पर रखें
0: जी
1: कि मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं,
0: जी
1: क्योंकि विचार को हम देख सकते हैं
0: अच्छा
1: और जिस जिस चीज़ को हम देख सकते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो ये बहुत ही
0: अब एक चीज और चाहेंगे, क्योंकि जो कि समाज का मतलब यू का इसका 50% हिस्सा है, जो जिस तरह महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में या पीरियड टाइम में कर सकती हैं कोई इस तरह का?
1: हाँ, शुरू में जैसे उसमें क्या है, 3 महीने तक थोड़ा सा वो रखें ध्यान,
0: अच्छा
1: उसके बाद जैसे अनुलोम विलोम और ये जो भ्रामरी ओम का उच्चारण ये हो गया, और जब लास्ट का जो महीना बचता है ना उसमें तो हम कुछ ऐसे आसन हैं,
0: जी।
1: लेकिन वो चिकित्सक की देख रेख में उससे डिलीवरी में आसानी होती है, बल्कि
0: अच्छा हाँ, क्योंकि
1: वो
0: आजकल
1: आसन
0: बड़ी
1: करने से।
0: समस्याएं हो रही हैं आजकल।
1: हाँ, जैसे हम डक वक चलते हैं उसमें पोज
0: अच्छा
1: होते हैं कुछ आसनों के,
0: जी
1: तो लास्ट का जो महीना है उसमें तो, और पहले देखो आप देखिए
0: जी
1: कितनी नॉर्मल डिलीवरी होती थी।
0: हाँ जी
1: इसका
0: बिल्कुल
1: कारण क्या था, महिलाएं कार्य करती रहती थी,
0: जी।
1: सारे काम करती थी अपना
0: नहीं
1: देख
0: परमेंद्र जी,
1: ध्यान
0: एक
1: में।
0: बात और चाहेंगे हमें,
1: हाँ
0: देखो काम तो करती है, अभी घर का काम करें, चलो पहले
1: हाँ
0: खेत का या मेहनत का ज्यादा काम
1: हाँ
0: आता हो,
1: हाँ
0: खेत का काम काम तो कर रही है। अगर महिला
1: हाँ
0: हो ये कहो कि भाई काम नहीं कर, काम तो वो कर रही है,
1: हाँ जी
0: लेकिन अब क्या है ये जीवन है ना, इस तरह जटिल हो गया है, तो उसमें थोड़ी वो समस्याएं होगी हैं, तो उसके लिए बस ये हिमालय जिस तरह अपना योग कर रही
1: उसको
0: थी
1: जैसे
0: तुम।
1: कपालभाति को अवॉइड कर दो,
0: अच्छा
1: कपालभाति जो डायरेक्ट पेट पे असर पड़ता है ना,
0: जी
1: कपालभाति को अवॉइड करो उसमें।
0: जी
1: लेकिन हम अनुलोम विलोम आराम से और लंबे सांस आप कहीं भी, और ध्यान करना जैसे अब
0: जी
1: ओम का उच्चारण करना है उसमें, तो चाहे कोई भी हो, चाहे बेसिक
0: अच्छा
1: प्रेग्नेंट हो महिला, और
0: जी
1: उससे क्या होता है सीधा हमारे मन में शांति मिलती है,
0: जी
1: मन शांत होगा हमारे विचार ठीक होंगे, विचार ठीक होंगे तो हमारे इमोशन अच्छे होंगे, और
0: जी
1: इमोशन अच्छे होंगे तो बॉडी अच्छा काम करेगी।
0: जी अच्छा। अब ये आखिर में एक बात और चाहेंगे आपसे,
1: हाँ
0: जिस
1: जी
0: तरह मान लिया आपने बता दिया, और कई बार क्या होगा जो देख के ना, देख के ही कर सकते हैं सब,
1: हाँ
0: और क्या आप
1: ये
0: कोई इस तरह प्रशिक्षण देते हैं, क्या आपको कुछ करते हैं इस तरह, मान लिया कोई
1: ये
0: आपसे
1: हम
0: सहायता चाहे
1: हाँ बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसमें देख रेख में आपके
1: लेकिन हम
0: करवा
1: सब
0: सकते
1: अभी
0: हैं?
1: स्पेशल तो हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चलाया, लेकिन हम स्कूल में अगर हमें कोई इस बारे में हमसे मिलना चाहता है
0: जी
1: तो वो मिल सकता है, और उसको हम बता सकते हैं योग
0: अच्छा
1: के बारे में, बिल्कुल प्राणायाम आसन दंड बैठक जो भी कुछ है, सारी एक्सरसाइज है जो फिजिकली मेंटली
0: यानी
1: इमोशनली,
0: जो समस्या उसके अनुसार
1: हाँ
0: उनका
1: कोई भी
0: समाधान
1: समस्या हो
0: बता
1: उसका
0: सकते हैं।
1: समाधान हम बता सकते हैं।
0: तो डीपी साहब, अब एक ये चीज़ चाहूँगा, आप अपना फ़ोन नंबर और दे दीजिए, ताकि आपसे संपर्क करना चाहे तो उस हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ
1: हाँ,
0: बताइए।
1: एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, वो छूट गई थी हमारी,
0: हाँ जी बताइए
1: जैसे मेन कोई बीमार आदमी है कोई भी,
0: जी
1: प्रेग्नेंट महिलाएं हैं
0: जी
1: तो ज़्यादा मोटे लोग हैं,
0: जी
1: तो उनको विशेषकर अपने डॉक्टर चिकित्सक की सलाह के साथ ही योग साथ में सलाह जरूर रखनी है, और
0: अच्छा
1: मेडिसिन को साथ में रखना अपना, ये नहीं सोचना कि बीमार योग करने लग गया तो मैं
0: मैं
1: मेडिकल
0: आराम
1: छोड़
0: हो
1: दी
0: जाएगा, ठीक हो
1: एकदम
0: जाऊंगा।
1: आराम हो जाएगा,
0: अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: प्रोसेस है
0: जी
1: तो ये चलता है लंबा,
0: जी
1: लेकिन इसमें साथ में अपने चिकित्सक की सलाह जरूर लें,
0: जी
1: ये
0: तो आप
1: विशेष बात
0: अपना
1: है।
0: फ़ोन नंबर और दे दीजिए,
1: मेरा फ़ोन नंबर है जी 9813 34 236।
0: 2 3 6।
1: हाँ जी
0: तो परमेंद्र सिंह मार
1: हाँ, परविंदर
0: जी,
1: सिंह मार, डॉक्टर परविंदर कोच भी आप, चैनल भी है मेरा,
0: अच्छा डॉक्टर परमिंदर कोच भी
1: यस
0: है,
1: हाँ,
0: ठीक है जी।
1: यूट्यूब पे चैनल है, इंस्टाग्राम पे है।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो पहले मैं ट्रीटमेंट भी करता था एक्यूप्रेशर द्वारा, हजारों आदमी ठीक होते थे।
0: चलो ठीक
1: हाँ
0: है,
1: जी,
0: चलो
1: कोई भी
0: फिर अब
1: बीमारी,
0: जो भी मान लिया इस तरह की कोई
1: हाँ
0: समस्या हुई तो आपसे संपर्क
1: बिल्कुल
0: कर लेंगे।
1: संपर्क कर सकते हैं जी,
0: तो इस योग संबंधी जानकारी देने के लिए डॉक्टर परमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका दिया, धन्यवाद जी बहुत।
2: विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये बातचीत, विषय था योग के शारीरिक व मानसिक लाभ और बातचीत की जा रही थी श्री परविंदर सिंह के साथ। ये प्रसारण आपने सुना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

नमस्कार हमारे सभी सुनने वालों को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम सुबह सवेरे में। और कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम आपको कौन से गीत सुनवाएंगे और किस किस विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जी हाँ, कुछ विषय हैं आज भी हमेशा की तरह हमारे पास, और दिन विशेष पर हम बात करेंगे और सामयिक कुछ बातें करेंगे और गीत भी आपको सुनवाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आज के एक विषय को उठाते हैं और वो विषय है हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हेट स्पीच यानी कि घृणास्पद भाषण। यह घृणास्पद भाषण के बढ़ते खतरे पर वैश्विक ध्यान केंद्रित करता है आज का ये दिन। 18 जून को हम ये दिन मनाते हैं। यह सरकारों और संगठनों को घृणास्पद भाषण से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां और कानून बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह व्यक्तियों को घृणास्पद भाषण की पहचान करने और उनके खिलाफ खड़े होने के लिए भी सशक्त बनाता है। यह समावेशी और सहिष्णु समाज की निर्माण की दिशा में एक कदम है। और हर दिन कोई ना कोई उद्देश्य को लेकर ही श्रोताओं हम मनाते हैं। इस दिन का मुख्य लक्ष्य है सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाज समूहों और व्यक्तियों को घृणास्पद भाषण की पहचान करने, संबोधित करने और उसका मुकाबला करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करना। घृणास्पद भाषण की बात करें तो वो ये है कि किसी व्यक्ति या समूह को उनकी पहचान जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, राष्ट्रीयता आदि के आधार पर अपमानित करना या कलंकित करना। और ऐसा भाषण समाज में हिंसा को भड़का सकता है, भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर कर सकता है। हर साल 18 जून को घृणास्पद भाषण यानी कि हेट स्पीच के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मनाते हैं। घृणास्पद भाषण के हानिकारक प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने के उद्देश्य से आज का दिन मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जुलाई 2021 में एक प्रस्ताव पारित करके आज के दिन को इस विशेष दिवस के रूप में घोषित किया गया था। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र की हेट स्पीच पर रणनीति और कार्य योजना पर आधारित है, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय घृणा भाषण विरोध दिवस हर साल आज के दिन हम मनाते हैं और उद्देश्य यही है कि समाज में फैल रही नफरत, असहिष्णुता और भेदभाव को रोकना, शांति, सहिष्णुता और मानव अधिकारों को बढ़ावा देना। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और अन्य मंचों पर घृणा से भरे विचार तेजी के साथ फैलते हैं, जिससे समाज में तनाव और हिंसा बढ़ सकती है। इस दिन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश और सामाजिक संगठन जागरूकता फैलाते हैं ताकि लोग जिम्मेदार तरीके से संवाद करें और विविधता, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, सभी देशों की पहचान है और भारत की भी। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सभ्यता, संस्कृतियाँ, रीति रिवाज, वेशभूषा, बोली, खान पान, सभी में विविधता पाई जाती है, लेकिन ये भारत की विशेषता है कि विविधता में भी यहाँ एकता है। तो हमें चाहिए कि हम इस विविधता का सम्मान करें। शिक्षा, संवाद, समझदारी के जरिए ही घृणा भाषण का मुकाबला किया जा सकता है। यह दिवस हमें प्रेरित करता है कि हम अपने शब्दों और अपने कामों से समाज में एकता, प्रेम और सहिष्णुता को बढ़ावा दें।

खूबसूरत संदेश देता है गीत, जो कि अभिनेता धर्मेंद्र पर फिल्माया गया। इसके बोल भी बहुत ही खूबसूरत और आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और अब साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और विषय पर बात करते हैं, और वो है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। आज के दिन हम मना रहे हैं, यानी कि

0: 18 जून को। मौसमी खाद्य पदार्थों के महत्व को ये दिन उजागर करता है। टिकाऊ गैस्ट्रोनॉमी का पालन करने से न केवल पर्यावरण की क्षति को हम कम कर सकते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकती है। यह दिन हमें सिखाता है कि स्वाद और पर्यावरण की रक्षा एक साथ संभव है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे प्रत्येक वर्ष 18 जून को हम मनाते हैं और इस दिन का उद्देश्य खाने की आदतों और खाद्य उत्पादन के टिकाऊ तरीकों को प्रोत्साहित करना है, ताकि पर्यावरण, कृषि और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा हो सके। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ केवल स्वादिष्ट भोजन से नहीं, बल्कि यह इस बात से भी जुड़ा है कि भोजन कहाँ से आता है, कैसे उगाया जाता है और किस प्रकार से वो हमारी संस्कृति से जुड़ा होता है। और इसके लिए ज़रूरत है कि दुनिया भर में इस दिन को जो मनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण के अनुकूल खेती हो, खाद्य सुरक्षा हो, पोषण हो और भोजन के सही तरीकों को बढ़ावा दिया जाए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे भोजन की पसंद का पर्यावरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए हम भी अपना योगदान दे सकते हैं, जैसे कि अपने क्षेत्र के पारंपरिक व्यंजनों को पकाएं, जिसमें स्थानीय मोटे अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार आदि का भी हम उपयोग करें। इसके अलावा गीले कचरे से हम खाद बनाएं, रसोई में बचे हुए सब्जी या फल के छिलकों को फेंके नहीं, उनसे हम खाद बना सकते हैं। अपने आसपास जहां भी आप रहते हैं, स्थानीय किसान या बाजारों से सीधे ताज़ी सब्जियां और फल खरीदें। सादा जीवन जीने, सादा खाना खाएं, और सादा खाना खाएंगे, सादा जीवन जिएंगे तो उम्र भी लंबी होगी, घर में भी जो है बचत होगी और जो स्थानीय किसान हैं, स्थानीय दुकानदार हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा।
1: ये समझो और समझाओ।

श्रोताओं, आज हम गोवा दिवस भी मना रहे हैं। गोवा क्रांति दिवस हर साल 18 जून को मनाया जाता है। यह दिन 1946 में गोवा की पुर्तगाली शासन से मुक्ति की शुरुआत का प्रतीक है। इसी दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा के मडगांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था और पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उनके इस कदम से गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा मिली और यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे गोवा में फैल गया। और श्रोताओं, आंदोलन धीरे धीरे जब पूरे गोवा में फैला तो लोगों ने पुर्तगालियों के अत्याचारों के खिलाफ संगठित रूप से विरोध करना भी शुरू कर दिया। 18 जून का दिन गोवा की आज़ादी की नींव रखने वाला दिन माना जाता है। हालांकि गोवा को पूर्ण स्वतंत्रता 19 दिसंबर 1961 को मिली। यह दिन गोवा के लोगों के संघर्ष, साहस और बलिदान की याद दिलाता है और युवा पीढ़ी को आज़ादी की कीमत समझने का अवसर देता है। तो श्रोताओं, गोवा दिवस के बारे में हमने बात की। एक और दिन हम मना रहे हैं आज, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे। उसके बारे में बात करेंगे। इस बीच सुन लेंगे कुछ विज्ञापन भी।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: ये आपने सुने कुछ संदेश और हम बात करते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस के बारे में। आज के दिन यानी 18 जून को ये अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस हम मनाते हैं और यह दिन परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ समय बिताने और प्रकृति के समीप जाकर आनंद लेने का एक सुंदर अवसर है। पिकनिक का अर्थ केवल भोजन करना नहीं है बल्कि हंसी, बातचीत, खेल और आपसी संबंधों को भी मजबूत करना है। श्रोताओ, वैसे तो हर कोई जाना चाहता है घूमने के लिए और हर कोई अपने बजट के अनुसार, अपने समय के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग जगहों पर घूमना चाहता है और घूमने जाता भी है। कोई कलात्मक जगह देखना चाहता है, गर्मी के दिन है तो कोई पहाड़ों पर घूमना चाहता है, तो कोई धार्मिक स्थल जो है उनकी यात्रा करना चाहता है। इस दिन लोग पार्कों में, बागों, समुद्र तटों या पहाड़ों पर जाकर खुली हवा में खाना खाते हैं, घूमते हैं, आनंद मनाते हैं और मनोरंजन करते हैं, प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। यह व्यस्त जीवन शैली से एक सुखद विराम है जो मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। बच्चों और बड़ों सभी के लिए पिकनिक एक सकारात्मक अनुभव होता है और जब हम पहली बार किसी जगह भी जाते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरे जीवन भर के लिए एक याद के रूप में जुड़ जाता है। जैसे कि किसी पहाड़ी स्थल पर जब हम पहली बार गए तो वो याद हमें हमेशा याद रहती है, एक सुखद याद के रूप में। और जब बच्चे छोटे होते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं, तो वो भी उस अनुभव को भूल नहीं पाते। तो यह दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक डे हमें सिखाता है कि छोटे छोटे पलों में भी बड़ी बड़ी खुशियां छिपी होती हैं।

खूबसूरत गीत और श्रोताओं बात कर रहे थे हम पिकनिक डे के बारे में। वैसे भी पिकनिक मनाने यदि हम जाते हैं तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी हमारे सुधार होता है, तनाव घटता है, परिवार दोस्तों के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं, हम ताज़ी हवा में सांस ले पाते हैं और इस डिजिटल दुनिया से दूर रहने और प्रकृति के बीच सुकून के कुछ पल बिताने का बेहतरीन अवसर देती है पिकनिक हमें। तो भैया आप घूमने ज़रूर जाइए अपने समय के अनुसार, अपने बजट के अनुसार, और कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखिए जब आप पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। और उस पर हमने पिछले एक कार्यक्रम में भी बात की थी कि यदि जब हम घूमने जाएं तो किस तरह की चीज़ों का, किस तरह की बातों का ध्यान रखें और लापरवाही तो बिल्कुल भी ना बरतें, तो आपकी पिकनिक, आपका सफ़र, आपका घूमना फिरना आपके लिए स्वास्थ्यमंद हो, आपके लिए बेहतरीन रहे, खुशनुमा बन जाए, इसकी हम कामना करते हैं। और श्रोताओं इसी के साथ संपन्न करते हैं आज का सुबह सवेरी कार्यक्रम। आपके साथ ही आपकी साथी उषा मलिक।

अभी आप सुन रहे थे हमारी दैनिक प्रस्तुति सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले के लिए प्रतीक्षा करें।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
2: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ा

0: बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
6: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
4: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
7: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
4: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
8: We have a huge pool of talent.
9: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
10: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम $300 अरब के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद, 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय

0: टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड विवाटेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों। पीएम मोदी टू आल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: India and France, it goes beyond geopolitics, education, culture, AI, innovation, it is everything.
4: So we are very thankful ki Modi ji aaye humse mile.
2: In Paris, Prime Minister Modi will attend the VivaTech 2026 alongside French President Emmanuel Macron. The VivaTech Summit is Europe's largest technology and startup event where Mr. Modi is expected to highlight India's growing innovation, ecosystem and technological advancements. Prime Minister Modi is also scheduled to address members of the Indian community during a special diaspora event. We have more from our correspondent.
5: Today, the Prime Minister continues packed itinerary designed to supercharge bilateral trade and innovation partnerships. He will lead the charge by covering a specialized roundtable with top French and European business leaders, focusing on driving strategic investments into India's expanding industrial and tech corridors. The centerpiece of the visit takes place later today at VivaTech, Europe's premier technology and startup conference. Prime Minister Modi, alongside French President Emmanuel Macron, will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. The intensive diplomatic trip will wind down with a major community outreach initiative. The Prime Minister is slated to attend a massive diaspora reception featuring vibrant cultural performances that celebrate India's heritage. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
2: The Paris leg of PM Modi's visit is expected to further strengthen India-France relations, particularly in technology, innovation and people-to-people ties. President Draupadi Murmu will embark on a 5-day visit to

0: आकाशवाणी रोहतक से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत।
1: हाँ जी साहेबान सुनिए, गोपी तंद महल माता है रानी से पूछता कि रानी मन तो बहुत जरूरी काम था दरबार में, आपने मैं कैसे बुला दिया। रानी कहने लगी महाराज बहुत कसूता सपना आया है, मेरी बात सुन ले, मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। क्या कहने लगे सुनिए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज कलाकार हैं रतनलाल।
3: तो सुनिए साहबान, गोपी तन कहने लगे मंत्राल से, मंत्राल ये जो सपने है ना, ये एक और दंडाल होते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती, क्यों खाम का घबराती है तुम तो? क्या कहने लगे?

तो सुनिए साहिबान, तो साहिबान राजा कहने लगा मेरे लिए और कोई काम हो बताओ, मैंने बहुत जल्दी दरबार में जाना हमारा। रानी कहने लगी महाराज आपके लिए गर्म पानी डाल दिया मैंने, आप स्नान करके चले जाना, आपके लिए चौकी चाकी सब बिछा दिया हमने। तो राजा स्नान के लिए बैठ जाता है। सुनिए इस मौके की बात क्या कहने लगी रानी।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।
1: तो सुनिए साहिबान, गोपी तो स्नान के लिए बैठा हुआ था, उसकी कमर में रानी मैनावंती घूम रही थी, उसकी एक आंसू की बूंद गोपी चंद की कमर में पड़ जाती है। जब तक गोपी चंद ना पैर धोए थे ना हाथ धोए थे, कुल्ला तक नहीं किया था, हतम बेवा आ गया, कहने लगा रानी बांधी दासी धोबी खड़ी थी, उनसे कहने लगा ये बूंद कहाँ से आई है, अब तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ऊपर जाकर देखा कि महाराजा आपकी माता खड़ी है और वो आंसू टपका रही है, पता नहीं क्या कारण है। तो क्या कहने लगा गोपी चंद, एक चंबा

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार थे रतनलाल। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। और अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी साथी उषा मलिक। फ़ोन नंबर आप जानते ही हैं लेकिन दोहराते हैं अपने नए सुनने वालों के लिए, 255-446, 255-447 और 255-448 तीन फ़ोन लाइन्स हैं। 01262 STD कोड लगाना ना भूलें रोहतक का, और किसी भी एक नंबर पर आप ट्राई करें और हम कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका फ़ोन कॉल ज़रूर मिलेगा और आपके पसंद का गीत भी आपको सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और पहले कॉलर हम तक पहुँच चुके हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो नमस्कार।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो
0: हेलो।
1: हाँ आवाज आ रही मेरी?
0: श्रोता की आवाज
1: श्रीकांत जोशी है, गांव का नाम लासुरगांव, जिला छत्रपति संभाजी नगर।
0: हाँ जी हाँ जी, सुनाई दी आपकी आवाज जी, दोबारा से दोहराइए अपना नाम।
1: नाम है श्रीकांत जोशी, मैं आपका रोहतक का श्रोता हूँ आकाशवाणी
0: जी। आपकी आवाज अभी कम सुनाई दी थी हमें, एक बार फिर से अपना नाम बताएंगे।
1: नाम है श्रीकांत जोशी।
0: श्रीकांत जोशी जी जी
1: जी हाँ।
0: कहाँ से नाम बताइए, जगह का?
1: जगह का नाम यानी मेरे गांव का नाम है लासुरगांव, जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र
0: जी। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?

0: प्रेम रंग फिल्म का गाना सुनने का है।
1: हाँ जरूर सुनवा देंगे, और कुछ बताना चाहेंगे?
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा आते हैं सुनते हैं मैडम जी।
1: जी बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रमों को सुनने के लिए और फोन करने के लिए भी।
0: जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद
1: धन्यवाद। और इनकी पसंद का गीत सुन लेते हैं।

0: शुदो हेलो रोहतक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अपने सुनने वालों से, अपने सभी श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि पिछले एक महीने के दौरान जिस भी श्रोता की फ़ोन कॉल मिली है कार्यक्रम में, कृपया करके वो अपने दूसरे साथियों को मौका दें और वो केवल कार्यक्रम को सुने, फ़ोन कॉल ना करें। और देखते हैं अब हमारे साथ कौन से साथी जुड़े हैं। हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, नमस्कार।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंसमेल बुगला से बात कर रहा हूँ मैडम।
0: हाँ जी, बहुत स्वागत है। और बताइए कौन सा गीत सुनवाते हैं आज?
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है प्रेम और उसमें गाने के बोल है मेरी चूड़ी बजी खनखन, ये कुछ गाना है
0: जी। जरूर सुनवाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस मैडम, आपका कार्यक्रम अच्छा लगता है, हम सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ और आपके कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्यों जो दिन भर से कार्यक्रम आते हैं ना उससे भी अच्छा आपका कार्यक्रम आता है कि आप सुबह 6 बजे तक कार्यक्रम चलाते हो, तो ऐसा लगता है कि पूरे दिन भर के कार्यक्रम आप प्रेस करते हो।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि ये जानकर कि आप सुबह 6 बजे से ही कार्यक्रमों को सुनते हैं, भक्ति संगीत से जो है कार्यक्रम आप सुनना शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात है, सुनते रहिए इसी तरह से।
1: मैडम आपके कार्यक्रम में जो हमको पता पड़ता था कि यार कौन सा बार है, जैसे कोई भी चाहे गुरुवार को या तो गुरु भजन आते हैं या फिर विष्णु भगवान भजन आते हैं, शनिवार को शनि महाराज के भजन आते हैं, सोमवार को आते हैं, तो हम
0: बिल्कुल भक्ति रचनाओं में भी विविधता रहती है तो सुनकर कार्यक्रम को अच्छा लगता है आपको, है ना?
1: जी
0: चलिए, धन्यवाद करते हैं आपका और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
0: ओके।

0: और अगले साथी हम तक पहुंच चुके हैं, जानते हैं उनकी भी पसंद। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, नाम बताइए।
1: नाम जी, मैं राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ जी, तहसील बौड़ा झुंझुनू राजस्थान से।
0: हाँ जी, आप कार्यक्रम लगातार सुनते हैं?
1: हाँ जी सुनते हैं, बिल्कुल, रेडियो मेरे पास है जी, बाग लगा रखा है, 150 रुपया दूंगा जी।
0: हाँ जी, बहुत बढ़िया।
1: हाँ जी,
0: कौन कौन से पौधे हैं आपके बाग में?
1: पौधे जी जी नींबू है ज्यादा तो, मौसमी, संतरा।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है।
1: हाँ जी,
0: और फलों के बीच आप रहते हैं, हरियाली के बीच रहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं।
1: हाँ जी,
0: बड़ी अच्छी बात है। और क्या कहना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: यही चाहूंगा जी, गाना तो है जीने की राग है, आने से उसके आए बहार, और मैं सभी श्रोताओं को ये कहता हूँ कि पेड़ जरूर लगाएं जी, मौसम आने वाला है अभी।
0: बिल्कुल, बरसात का मौसम आने वाला है तो जरूर पेड़ पौधे कुछ ना कुछ
1: जरूर लगाएं सर।
0: बड़े अच्छा आपका संदेश है, और सुनवाएं आपको गीत?
1: हाँ ठीक है जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और गीत से पहले कुछ संदेश भी सुन लेते हैं श्रोताओं।
2: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन, विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर, आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर, हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार, अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

0: हेलो हेलो, नमस्कार जी।
1: देवेंद्र कुमार, गांव निगाना कला, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो रोहतक में आपका। कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। कार्यक्रम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है जी।
0: बड़ी अच्छी बात है। कौन सा गीत सुनवाएं?
1: ये पुरानी पिक्चर है जी, दुश्मनों से बेहतर में आई थी। ये मुमताज राजेश खन्ना पे फिल्म आ गया गाना, लता की आवाज में, बलमा सिपहिया है रे तेरी बंदूक से डर लागे।
0: अच्छा, वैसे तो देखिए बंदूक से डर तो लगना चाहिए, है
1: आज
0: ना?
1: अच्छा गाना है जी, लक्ष्मीकांत पहला का संगीत बस गीत है जी, बहुत अच्छा है जी।
0: गीत तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल जो पिस्तौल बंदूक का प्रचलन युवाओं में बढ़ गया है और
1: हाँ जी हाँ जी
0: अपराध बढ़ गए हैं, ये थोड़ी चिंता वाली बात।

0: है ना
1: जी हाँ जी
0: जी।
1: हाँ जी
0: बंदूक से बिल्कुल डर नहीं लगता आज के युवाओं को, और मारा मारी
1: जी
0: बहुत बढ़ गई है, अपराध बहुत बढ़ गए हैं समाज में, ये चिंता वाली बात है
1: हाँ जी हाँ जी जी
0: जी। मनोरंजन के लिए गीत आपको जरूर सुनवाएंगे, और कुछ कहना चाहेंगे?
1: धन्यवाद जी धन्यवाद जी
0: शुक्रिया आपका भी
1: अच्छा
0: कॉल करने के लिए।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हेलो
6: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम जी।
5: हेलो
6: हेलो,
5: हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
6: जी नमस्कार मैम जी, मैं वीरेंद्र गाना बोल रहा हूँ जी, गांव जेवराई सार से।
5: हाँ जी वीरेंद्र, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
6: हाँ सुनना मैम जी, फिल्म रहेगी नाम गुम जाएगा, उसका एक गीत है जी, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, उस लड़की पे दिल आया है जिसने मुझे सताया।
5: जी बिल्कुल सुनवा देंगे। और हिसार में आपके मौसम कैसा है?
6: मौसम जी, दो दिन पहले तो बारिश हुई थी मैम जी, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ने लगी।
5: हाँ देखिए, जब भी बात होती है गर्मी की तो हरियाणा में हिसार सबसे गर्म रहता है, लेकिन इस बार रोहतक ने रिकॉर्ड तोड़ा। रोहतक में लगातार दो दिन तीन दिन इस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, जब गर्मी थी है ना।
6: अभी अभी बारिश का,
5: हाँ बीच बीच में तो बारिश आई तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया।
6: अच्छा,
5: और कुछ विशेष कहना चाहेंगे कार्यक्रमों के बारे में?
6: विशेष तो मैम जी ये कहना चाह रहा जी, जो व्हाट्सएप पर आधारित है उसका प्रोग्राम चलाओ जी, सभी स्टेशन पे सुन रहे हैं जी व्हाट्सएप का, लेकिन आप पे नहीं चल रहा जी।
5: हाँ चलिए, बात तो हमने की थी इस बारे में, आगे फिर से बात करेंगे, हो सकता है कार्यक्रमों में जब बदलाव हो तो जरूर इस बार शामिल हो।
6: संगीत सुनाते थे उसमें 90s के गीत ज्यादा सुना रहे जी, नए गीत
5: सुना 90s के। चलिए, हर तरह के गीत वैसे शामिल होते हैं, आपकी पसंद वैसे पूरी होनी तो चाहिए। हर प्रेजेंटर अलग अलग तरह के गीत हर दिन लेकर आता है और कोशिश कर लेंगे ज्यादा सुनवाने की।
6: आप उषा मलिक जी बात करें मैम?
5: बिल्कुल, उषा आपके साथ हैं।
6: ठीक है मैम जी, धन्यवाद मैम जी।
5: धन्यवाद आपका भी कॉल करने के लिए।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते। संदीप बोल रहे हैं हमारे साथ राजस्थान से। अपना परिचय एक बार फिर से दीजिए, आवाज़ हमने सही पहचानी।
1: जी मैम, मैं बिल्कुल गांव शेरडा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से संदीप बोल रहा हूँ मैम।
0: हाँ, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम, आप सुनाएं कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं और आपसे बात करके अच्छा लगा। शायद कई दिन बाद आपकी कॉल मिली है।
1: हाँ मैम, पिछले वीक ट्राई किया था और उससे पिछले वीक आप ही थे शायद। सुना तो था प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा था। मतलब सुनते ही पहचान जाते हैं हम, जैसे पुराने जो अनाउंसर होते हैं ना, उनको तो तुरंत ही अच्छा लगता है सुनना। कभी कभी प्रोग्राम सुन भी लेना चाहिए, मतलब मिलाने से बेटर होता है कभी कभी सुनना भी।
0: बिल्कुल। तो और बताइए, कैसा क्या चल रहा है आपके जीवन में अभी फिलहाल?
1: अभी मैम स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं और उदयपुर पोस्टिंग है मेरी मैम।
0: बहुत अच्छी बात है। और कितना अच्छा लगता है जब हम जिस बच्चे को हम सुनते हैं बचपन से, उन्होंने फोन कॉल मिलाया और उनसे हमारी बात होती रही और अब
1: हाँ
0: वो एक
1: मैम,
0: अध्यापक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। गर्व की
1: हाँ मैम,
0: बात है हमारे
1: 2007
0: लिए भी।
1: 8-9 से सुन रहा हूँ, छठी सातवीं क्लास से। और मैम अभी जनगणना वाला कार्य पूरा किया मैंने, जनगणना में ड्यूटी थी इस बार।
0: बिल्कुल, ड्यूटी लगी हुई है अध्यापकों की जनगणना के काम में। बड़ी अच्छी बात है।
1: उसमें मैम एक क्वेश्चन था, रेडियो कितने लोग सुनते हैं? तो बहुत कम लोग सुनते हैं। लोग क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्या आजकल कौन सुनता है रेडियो? मतलब लोगों के ये जवाब होते थे, जो क्वेश्चन थे ना अपने 35 क्वेश्चन थे पर घर से जो थे ना मकानों के सूचीकरण में, तो मतलब बहुत कम लोग रह गए अब जो रेडियो सुनने वाले हैं। पर अच्छा लगता है रेडियो पर सुनना, मुझे तो आज भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब अब भी सुनता हूँ बहुत बार।
0: देखिए, कितने ही लोग हैं जो लगातार फ़ोन मिलाते हैं, कितने ही लोग हैं जो फ़ोन नहीं मिलाते लेकिन रेडियो सुनते हैं, कितने ही ऐसे युवा हैं जो अपनी गाड़ी में सुनते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से सुनते हैं। तो सुनने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ऐसी बात नहीं है। ये अगर किसी व्यक्ति ने
1: हाँ
0: कहा कि
1: मैम,
0: कौन सुनता है तो
1: जैसे
0: ज़रूरी
1: जितने
0: नहीं है कि
1: आदत
0: बहुत कम लोग सुनते हैं, है ना?
1: जी, मतलब जिसने सुना है ना शुरू में, मतलब वो तो सुनेगा निश्चित ही है, जरूर वो कुछ टाइम के लिए दूर हो सकता है रेडियो से, लेकिन वो निश्चित रूप से सुनेगा रेडियो। जैसे मैं हूँ, मतलब टाइम नहीं मिलता वो अलग बात, लेकिन टाइम अब छुट्टियों में तो बहुत सारा टाइम होता है, खूब सारा सुनता हूँ।
0: बिल्कुल। और
1: और मैम
0: नए
1: आप इस
0: नए श्रोता भी जुड़ते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: जी
0: हाँ, ऐप के माध्यम से भी श्रोता सुनते हैं। चलिए,
1: मैम,
0: बड़ी
1: आप
0: अच्छी
1: गाना
0: बात
1: सुना
0: है
1: दीजिए,
0: संदीप।
1: बहुत सारे लोग लाइन में लगे श्रोता, तो आप सुना दीजिए एक रास्ता है जिंदगी वाला सॉन्ग।
0: हाँ बिल्कुल, सुना देंगे। बहुत खूबसूरत गीत है, संदेश देता हुआ। धन्यवाद संदीप, बहुत अच्छा
1: शुक्रिया
0: लगा
1: मैम,
0: आपसे बात करके।

बिल्कुल श्रोताओं, ज़िंदगी का असली मतलब है लगातार आगे बढ़ते रहना। जिस तरह नदी बहती रहती है, उसी तरह हर परिस्थिति में कदम से कदम मिलाकर चलते जाना ही जीवन है। और इसी खूबसूरती को दिखाया इस गीत ने भी, जो पसंद किया था हमारे श्रोता जो राजस्थान शिरडी से हमें फ़ोन करते हैं।

0: संदीप ने, और अब देखते हैं हमारे साथ हमारे कौन से श्रोता बंधु जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: हाँ जी, स्वागत है। कहिए, कौन सा गीत सुनेंगे आज?
1: तो समझ सकते हैं आप।
0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, फिर से बताइए, सुन नहीं पाए।
1: जी, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, गीत बताइए कौन सा सुनना चाहेंगे।
1: जी, फिल्म का नाम है मेरे दोस्त, मेरे हमदम मेरे दोस्त, और गाने के बोले चलो सजना जहाँ तक घटा चले।
0: बिल्कुल सुनवा देंगे। तो घटा छाई हुई है क्या आपके उज्जैन में?
1: हाँ जी बिल्कुल, बरसात भी हुई है कल हमारे यहाँ पे शाम को।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है।
1: बताओ, आपको मौसम एकदम सुहाना हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, और जैसे ही बरसात हुई ना, सभी किसानों के चेहरे पे रौनक आ गई, क्योंकि अभी 25 तारीख तक और भी बरसात हो जाती है ना, तो फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी।
0: चलिए, बड़ी अच्छी बात है, और इस सुहाने मौसम के साथ सुहाने गीत का भी आनंद लीजिए। धन्यवाद करते हैं कॉल करने के लिए आपका।
1: थैंक यू सो मच।
0: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम चल रहा है हेलो रोहतक, आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से, और श्रोता कॉल कर रहे हैं, हम उनकी पसंद के गीत सुना रहे हैं। और उम्मीद है जो श्रोता कॉल कर रहे हैं और उनकी कॉल नहीं मिल रही, या जो श्रोता कॉल भी नहीं मिला रहे बस कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो उनको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। अन्य श्रोताओं की जो पसंद है उसको सुनकर उन्हें भी अच्छा महसूस हो रहा होगा। देखते हैं अब हमारे साथ कौन से साथी जुड़े हैं। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते मैडम जी, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ नमस्कार जी, सुप्रभात, कहिए कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: जी जी, हम आपसे जुड़े हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से, संतोष खड़ से।
0: जी संतोष जी, अपनी पसंद का गीत बताइए पहले।
1: जी गीत आज हम पसंद कर रहे हैं पार्श्व गायिका अलका याग्निक जी, जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
0: जी
1: अपने 4 दशक की गायकी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अहम योगदान निभाया है और बॉलीवुड को बहुत ही अच्छे अच्छे सुरीले गीत
0: बिल्कुल दिए हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही मीठे गीत उनकी आवाज में हमें सुनने को मिलते रहते हैं।
1: और हमारी पसंदीदा गायिका भी है वह, तो उनके ही आवाज में गाया हुआ इश्क विश्क फिल्म का एक गीत है, ऐसा क्यों होता है बार बार, क्या इसको ही कहते हैं प्यार।
0: हाँ सुनवा देंगे आपको, और कुछ कहेंगे?
1: हाँ जी, हम तो कहेंगे कि आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हुए हैं अपनी यात्रा के, तो श्रोताओं को बहुत ही लाभान्वित किया है आकाशवाणी ने आज तक विभिन्न क्षेत्र में। कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण आकाशवाणी से किया जाता है, तो हम सभी के लिए आकाशवाणी सुनना एक बहुत ही एक अलग ही अनुभव रहता है। जब हम कहीं से आते हैं काम करके वगैरह, ऑफिस से आते हैं, तो आकाशवाणी सुनकर पूरी थकान दूर हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस तरह आप आकाशवाणी से जुड़े रहें।
1: हाँ जी हाँ जी, तो आगे के सफर के लिए भी हम आकाशवाणी को हम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।
0: जी आपकी शुभकामनाएं हम सब प्रस्तुतकर्ताओं तक पहुंचती रहती हैं, और आपकी इन भावनाओं का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद मैडम जी, आपका दिन शुभ हो।
0: आपका भी दिन शुभ हो, धन्यवाद।

0: और श्रोताओं, हमें लालच ये है कि एक और अपने श्रोता को हम कार्यक्रम में शामिल कर पाएं, तो जल्दी से बात कर लेते हैं उनसे। हेलो।
1: हेलो बहन जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है। नाम बताइए, गाना बताइए।
1: बहन जी, मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: हाँ जी, मानसा पंजाब से जगदीश जी, आपका स्वागत है। कौन सा गीत सुनवा दें?
1: बहन जी, आज संगीतकार दान सिंह जी की पुण्यतिथि है
0: जी
1: और उन्हीं की फिल्म माई लव, जिसमें मुकेश जी का गाया गीत सुनना चाहेंगे। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों
0: बहुत
1: की
0: ही
1: बात।
0: खूबसूरत गीत है।
1: हाँ
0: सुनवाते
1: जी
0: हैं
1: बहन,
0: आपको जल्दी से, समय कम है। धन्यवाद करते हैं आपका। कुछ विशेष कहना चाहेंगे?
1: बस यही कहना चाहूंगा कि बस जहाँ 3 नंबर जो है ना, तो थोड़ी सी हमें मुश्किल आती है, नंबर 1 ही हो तो बढ़िया है।
0: चलिए, आपकी बात आगे रखेंगे। फिलहाल सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

प्यार इंतज़ार सब्र की कोई इंतहा नहीं होती, न दिल दिया होता न इंतज़ार किया होता। बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ मुकेश के गाए हुए माई लव फिल्म

इसी गीत के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी उषा मलिक को आज का ये हेलो रोहतक कार्यक्रम यहीं समेटने की। उम्मीद है कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर, आकाशवाणी की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी। प्रातः के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों बाद आप सुनेंगे समाचार हिंदी और अंग्रेजी में, बारी बारी से रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं, जहां प्रवासी भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ के देशों की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। मिजोरम में सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट और विपक्षी मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सैन्य अभियानों की तत्काल और स्थायी समाप्ति तथा 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर वार्ता पूरी करने का वादा शामिल है। इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 में इंग्लैंड ने क्रोएशिया के खिलाफ 4-2 की जीत के साथ ग्रुप एल में अपने अभियान की शुरुआत की। ग्रुप के पहले मैच में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 की बराबरी पर रहा। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा विश्व कप मैच में शुरुआती लाइनअप में जगह बनाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दोपहर के 12:30 और 11 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं

0: को विमलेश का नमस्कार।
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
0: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
0: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
0: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
0: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
0: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा। पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है? जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर

0: तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर। इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोजाना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हैं? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
2: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही।
4: बड़े
2: देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।
5: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी आपने सुना NCERT द्वारा तैयार किया गया प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले होंगे और 1:05 पर आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
9: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
3: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सिंध गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर विस्तार एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस, फ्रांस से महेश सोपड़े।
9: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंग रोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी जिले के सिवानी के गांव खेड़ा में नई अनाज मंडी में आयोजित हुए खादी रोजगार उत्सव में ग्रामोद्योग विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 972 कारीगरों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। साथ ही उन्होंने 3645 आधुनिक मशीनें एवं टूल किट भी प्रदान की।

0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर की 22,259 नई परियोजनाओं के लिए लगभग 504,68,00,000 रुपये की मार्जिन मनी व सब्सिडी का ऑनलाइन वितरण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती की बधाई भी दी। केंद्र सरकार के 12 गौरवशाली वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान के तहत कल सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा और जिला प्रशासन पलवल द्वारा जिला सचिवालय में सरकार की अंत्योदय उत्थान और जन कल्याण से संबंधित योजनाओं की विकास प्रदर्शनी एवं जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया। कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर, पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल, SDM भूपेंद्र सिंह, सूचना जनसंपर्क अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा,
1: आज पारस महिला, गरीब और किसान, उनके लिए किसान सम्मान निधि से लेकर युवाओं के स्टार्टअप और डिजिटल इंडिया तक हर सपने को साकार करने के लिए बहुत सारे काम हुआ है, बहुत सारे अभी बाकी हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने 2047 विकसित भारत का संकल्प दिया है, इस पर काम करने का काम कर रहे हैं।
0: उन्होंने कहा कि सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनी में केंद्र व हरियाणा सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास कार्यों, जनहितकारी योजनाओं, उपलब्धियों तथा नवाचारों को प्रदर्शित किया गया है। बादली के गांव मुनिमपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने पुष्प उत्पादन क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील किसानों को शॉल, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से चयनित किसानों को पुष्प रत्न एवं पुष्प सम्मान पुरस्कार प्रदान कर उन्हें उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। विशेष रूप से पुष्प उत्पादन के क्षेत्र में किसानों ने अपनी मेहनत, नवाचार और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि फूलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को भी बढ़ाया व दे रही है। उन्होंने किसानों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और जैविक खेती, बागवानी एवं पुष्प उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान किया। सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिसर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योगाभ्यास प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि ऋषि मुनियों की खोज योग भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में पहुंचाया है, जिससे भारत योग में विश्व गुरु बना है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CTT इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी परीक्षा सितंबर अक्टूबर में ली जाएगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ एवं सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि सेकेंडरी ओपन परीक्षार्थी 1,250 रुपये की शुल्क सहित तथा सीनियर सेकेंडरी ओपन परीक्षार्थी 1,300 रुपये के शुल्क सहित 13 से 23 से 15 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी रोहतक के लिए। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 1:10 यानी वक्त आकाशवाणी रोहतक से फिल्मी गीत और संगीत का, यानी वक्त आकाशवाणी रोहतक से चित्रपट संगीत का। तो आइए शुरू करें फिल्मी गीतों का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म सिलसिला से, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार शिव हरी।

अभी आपने सुना फिल्म सिलसिला का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम जीने की राह।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये बहार का गीत। अगला गीत एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, इस बार लता दीदी के साथ। गीतकार अख्तर रोमानी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत के इस गीत का, ये संगीत जो आप सुन रहे हैं, ये संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीतकार मोहम्मद रफी और फिल्म का नाम द ट्रेन।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में द ट्रेन फिल्म के इस गीत के बाद अब आपको सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म अनोखा रिश्ता का गीत, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: ये संगीत RD बर्मन का, आवाज आशा भोसले की और फिल्म का नाम अनोखा रिश्ता।

आज आपको सुनाऊं एक कहानी। एक था राजा, एक थी रानी। फिर क्या हुआ ये खुद सुनिए।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार नीरज और संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम कन्यादान।

प्यारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे

मोहम्मद रफ़ी और शंकर जयकिशन की जोड़ी के लिए नीरज का लिखा गीत आपने सुना फिल्म कन्यादान से, और इसी जोड़ी का एक और गीत फिल्म प्रिंस से, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। अगला गीत आनंद बख्शी का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म का नाम जब जब फूल खिले। आवाज आप खुद पहचानिए।

0: कहिए दोस्तों, लता दीदी की आवाज़ आपने पहचान ली होगी ना? जी हाँ, ये प्यार भरी आवाज़ थी लता मंगेशकर की, बोल आनंद बख्शी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और अब
1: अच्छा तो हम चलते हैं।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों के साथ अब हम भी चलते हैं। आज कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थी सिलसिला, जीने की राह, द ट्रेन, हसीना मान जाएगी, कन्यादान, अकेले हम अकेले तुम, अनोखा रिश्ता, जब जब फूल खिले और आन मिलो सजना। आज का चित्रपट संगीत यहीं तक। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले होंगे, पहले अंग्रेजी में और फिर हिंदी में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है।

0: झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा, मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

0: दौरान केवल जंग रोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,000

0: और 127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रोहतक। अब हमारे किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन खेत खलिहान।

0: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों देखो, मौसम की बात करें तो मौसम बदलाव की स्थिति में है और तेज़ धूप भी और घुटन भी महसूस है और दोपहर के समय में तो वह जो भाई बार रह जाए बड़ी मुश्किल का काम हो गया है। इसलिए अपने जो छाया का प्रबंध है वो ज़रूर करें, क्योंकि हमारा जो पशुधन है उसको भी हमने छाया में रखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ भाई चराने के लिए ले जाए हैं तो वो ज़रूर कोई न कोई वृक्ष का सहारा लें और अपने पशुओं को छाया में रखें, क्योंकि जो ये धूप है बहुत तेज़ धूप है और ये धूप जब ज़्यादा पशु को लग जाए है और फिर अचानक उसको हम तालाब में या पानी में डालते हैं पशु को, तो फिर उसको गर्म सर्द होने की बड़ी दिक्कत रहे है और हमारा जो पशु है वो बीमार हो सके है। भाई देखो, मौसम से तो हमने खुद भी बचना है, पशुओं को भी बचाना है और जो हमारी फसलें हैं उनका भी ध्यान रखना है। क्योंकि हमारी फसलें मुख्य रूप से जो चारे के लिए ली जा रही हैं उनमें जैसे ज्वार की हम बात करें, कुछ बाजरा भी भाई ले रहे हैं, कुछ मक्का भी ले रहे हैं। और इन बातों में देखो ये है कि भाई हमने ज़्यादा सूखे का जो चारा है वो पशु को नहीं डालना, क्योंकि यदि हम इसमें सूखा चारा मान लो सूखा मान्य हुआ चारा है, एक तो सूखा चारा अलग हो है और एक जो हरा चारा है यदि उसको हम समय पर पानी नहीं दे रहे तो उसके अंदर एक जहर बन जाए है और वो कई बार पशु को पत्ता लग जाए, जिसको हम देसी भाषा में कह दें वो दिक्कत आ जाए है। इसलिए हमने पशु को जो हरा चारा देना है वो अच्छे पानी से तर अच्छा होना चाहिए, पानी की उस चारे के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो हमने चारा देना है। इन बातों का भी ध्यान रखना है। और भाई देखो, बात ये भी आ जाए, भाई ध्यान तो हमने एक चीज़ का रखना पड़ा है, जैसे सब्जी फसलों की आज बात भी करेंगे, भाई जो सब्जी फसल है हमारी और उसमें हम समय समय पर जो दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो ध्यान रखने की हों हैं। और उसमें मुख्य बात तो ये है कि भाई हमने जो जितनी मात्रा में दवाई बताई गई है उतनी मात्रा में दवाई लेनी है और वही दवाई लेनी है, और सब्जी खाने के रूप में प्रयोग में आवे है उसमें जो ज़्यादा तेज तरार दवाई है वो हमने बिल्कुल नहीं डालनी है, क्योंकि वो आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हों हैं और उनके खाने से आदमी बीमार पड़ गया है और इससे जो हमारी सेहत है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होगा। और जो हम फसल बेच रहे हैं उसको भी जो हमारे खाने वाले हैं उनका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए एक किसान का फर्ज यही बनता है भाई वो साफ़ सुथरी चीज़ बाज़ार में भेजे, क्योंकि खाने वाले जो उपभोक्ता हैं उनको अच्छी चीज़ उसमें मिले। तो जो सब्जी फसल है, सब्जी फसलों में हमने कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ा है। और मुख्य रूप से तो भाई ये है कि भाई अब समय है, जैसे कई बार तो बरसात भी हो ली और उसमें पानी का काम भी ज़्यादातर चल रहा है, लेकिन जहाँ कहीं बरसात की कमी है उस जगह पे हमने जो सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है सब्जी फसलों में। जैसे हमारी चारे की फसल हैं, जो दूसरी फसलें हैं उनमें पानी की ज़रूरत है, उसी प्रकार जो सब्जी की फसलें हैं मुख्य रूप से, जैसे अब ये घिया है, तोरी है, करेला है, टिंडा है, या जो दूसरी हमारी जो फसलें जैसे चल रही हैं खीरा है, ये सारी की सारी फसलें इस तरह की हैं भाई, इनकी बेलों में पानी देना ज़रूरी है। एक जब हम पानी दे रहे हैं उस समय का ये ध्यान रखें कि भाई हम शाम को दें, क्योंकि मान लो हमने दिन में या सुबह भर दिया, उनकी जो नाली हैं उनमें भर दिया पानी और वो पानी रह गया, वो पानी हो गया गर्म, उनकी जड़ों के साथ जो गर्म पानी रह जाएगा तो वो फिर उसको हमारी जो सब्जी फसल है उसको नुकसान करेगा, और जब फसल नुकसान करेगा तो फिर वो पीड़ी पीड़ी पड़ जाएगी और फिर आगे आके वो जो फलत है उस पर नहीं आ पाएगी। और फिर जो किसान भाई हैं ये सोचेंगे भाई इसका कुछ कोई बीमारी होगी या कीड़ा लग गया, लेकिन वो कई बार पानी की भी दिक्कत है, इस तरह की बात हो गया है। तो हमने एक तो जो सब्जी फसल हम लेवा इस बात का ध्यान देवें कि भाई हमने उसी जगह पर लेनी है जहाँ पर पानी निकासी का हमारा प्रबंध अच्छा हो। जहाँ पर पानी निकासी का अच्छा प्रबंध होगा तो वहाँ पर इस तरह की दिक्कत नहीं आओगी। कई बार दिक्कत ये आ जाए हमारे किसान भाइयों के सामने, भाई नहर का पानी है और ओसरा सुबह लग गया, फिर उसमें किसान भाई ये कहूँ भाई अब ओसरा ना हम कहाँ ले जाएँ, वो तो टाइम बंदी हो गया। तो उसमें देखो हम पानी निकाल दें हम सब्जी फसलों में, लेकिन उसमें खड़ा ना करें, खड़ा करने की बजाय जैसे मान लो पानी हमने एक बार उनमें डाल दिया, जितना ज़मीन ने पीना है पी ले, बाकी की उसमें खड़ा ना करके उसमें तो सब्जी फसलों में तो उस पानी को यदि हम उतार देंगे तो वो भी फिर सही रहेगा और वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि हमने मान लो कोई हाथ की चीज़ है, जैसे मान लो भाई हमने तो ज़्यादातर हमारे खेतों में सोलर वाले सिस्टम चल रहे हैं, तो उसमें हम दोपहर को 2 बजे 2:30 बजे के बाद उसमें भरना शुरू करें, जब तक हम उसके अंदर पानी निकालते रहेंगे, जब तक वो ठंडा भी रहोगा क्योंकि चलता हुआ पानी है वो गर्म नहीं होता, इसलिए जो जड़ है वहाँ तक जो ताज़ा पानी है, शुद्ध पानी है, स्वस्थ पानी है वो जाना चाहिए। बाकी बात आज अपना विषय ये रहेगा कि वह जो हमारी सब्जी फसल है उसमें हम कीट नियंत्रण कैसे करें और उसमें किस चीज़ जो हम कीट नियंत्रण कर रहे हैं उसमें किस किस चीज़ की हमने सावधानी बरतनी ज़रूरी है भाइयों। लेकिन उससे पहले सुन लेंगे रागनी मुनिगर पावड़िया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

नमस्कार, फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शमाएं जलें।

0: तो भैया ने ये तो सुनी रागनी मुनिगर पावड़िया और उनके साथियों की गाई हुई। भैया उनकी रागनी एक और सुनेंगे, लेकिन खेत खलिहान में जो हम चर्चा कर रहे थे वो कर रहे थे भाई, सब्जी फसलों में जो हम कीट नियंत्रण कर रहे हैं उसमें हमने क्या कुछ सावधानी बरतनी है। उसमें देखो जो कीट हैं वो भी तो बिल्कुल आवे हैं भाई, चाहे कोई सी भी हम फसल लगा लें, लेकिन उसका जो प्रबंधन करना, उनको हटाना, उसके कई तरीके हैं। उसमें एक जैसे हम जैविक विधियों की बात करें, जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल कह दें हैं, उसमें भाई जो मित्र कीट हैं उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे जो मित्र कीट हैं यदि वो जीवित हैं, तो फिर जो दुश्मन कीट हैं उनको वो खाएंगे, और हमारे जो मित्र कीट हैं उनको खेत में रखना बहुत ज़रूरी है, और वो जब हमारे जो दुश्मन कीट आएंगे उनको कंट्रोल कर लेंगे। इसमें जैसे जीवाणु संबंधी कुछ दवाइयों हैं, उनसे भी हमने ये देखना है कि वो हम लगा सकते हैं, चाहे वो गोभी की हम बात करें, टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, या और कोई भी हमारी जो फसल है उसमें हम वो लगा सकें। इसमें और भी जैसे एक साधारण से फार्मूले ये हैं भाई, भाई कुछ भाई तो अपना जो नीम का तेल है उसको भी प्रयोग में कर लें। जो रस चूसने वाले कीट हैं जैसे सफ़ेद मक्खी है, थ्रिप्स है, या माऊ है, इस तरह के रोग है, वो हम 2-3 मिलीलीटर नीम का तेल और 1 लीटर पानी इस अनुपात में बनाना है। इसमें हमने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो हमारी फसल के पत्तों को लाल कर देगा। इसलिए हमने इस हिसाब से थोड़ा सा तेल डालकर नीम का उसका भी छिड़काव कर देंगे, तो फिर जो कीट हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। बाकी आ जा है उसको हम जैसे भाई यांत्रिक तरीका कह दें या जो भौतिक तरीका कह दें, उस तरीके से जैसे हाथ से है, कुछ शुरुआती अवस्था में कुछ पत्तों के ऊपर, कुछ फलों के ऊपर मान लो कीड़े हैं या उनके अंडे हैं वो हमने दिखाई देवे, तो उसको हम तोड़ कर और कहीं दूर ले जाकर और दबा देंगे। मान लो वो कम अवस्था उसमें लगे हुए हैं तो फिर वो उसमें काबू में भी आ जाएँ, और फिर हमारे खेत के अंदर इस तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें ट्रैप भी हम लगा सके हैं, रात में जो हानिकारक कीड़े हैं वो आएंगे, वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे और उससे भी वो नष्ट हो सके। बाकी एक तरीका ये भी है भाइयों, वे कुछ ज़मीनी कीड़े हैं वो हमारे कैसे ख़त्म हों भाई, हम जैसे बार बार एक बात कहाँ भाई, जेठ का महीना है या गहरी अच्छी जैसे गर्मी की हम बात करें, वो है उस समय पर हम खेत की जुताई गहरी करें, उससे भी जो ज़मीन के अंदर छिपे हुए कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और उससे बहुत सारा जो कीट नियंत्रण है वो हमारी फसलों से हो जाएगा। गहरी जुताई करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, फसल चक्कर अपनाना भी बहुत ज़रूरत है। एक जो हम फसल बोएं उसमें हवा का आवागमन ज़रूर होना चाहिए, यदि वो ज़्यादा स्यांगनी हो जाएगी या ज़्यादा ज़्यादा उसमें पौधे होंगे तो उसमें भी कीड़े आवे हैं, क्योंकि हवा का प्रबंधन हो नहीं पाता, उसके अंदर से हवा नहीं निकलती, उसके अंदर नोड़ाई गुड़ाई हम कर नहीं सकते। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देखो जो उचित दूरी रखेंगे इन चीज़ों में, जैसे पौधे से पौधे की उचित दूरी होगी, हमारा जो जल का प्रबंधन है वो इस तरीके से हो भाई, देखो ज़्यादा हम पानी दे जाएंगे कोई भी फसल है वो भी ख़राब होगी। पानी सिर्फ हमने जो देना है, जो सिंचाई करनी है, वो सिर्फ उतनी करनी है जितनी फसल को ज़रूरत है, उसकी जड़ों तक नमी पहुँचाना हमारा काम है। और उसके बाद के करें भाई, कुछ किसान भाई है एक चीज़ का ला लें भाई, हमने उस दिन हमारी छुट्टी है और उस दिन हम अपने खेत में पानी देंगे, लेकिन मान लो बीच में बरसात होगी और फिर ये सोचो भाई कदे फिर टाइम ना मिल रहा है हम उसमें पानी दे दें, ये सब्जी फसलों के लिए गलत हो जाए। इसलिए जब हमारी फसल पानी मांगे उसी समय पर हमने उसमें पानी देना, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो रासायनिक तरीके हैं वो तो आप बार बार जो भी डॉक्टर साहब हैं या जो साइंटिस्ट हैं आवे हैं उन तक आप ये सुनो ही हो भाई, उसमें इतनी दवाई मिलानी है, इतना पानी मिलाना, रासायनिक तरीके हैं वो तो, जैसे रस चूसने वाला कीड़ा है उसमें इमिडा क्लोरोपीड है या थाइमोक्सम दवाई है, ये इस तरह की दवाइयाँ हैं जिनका हम ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें भाई एक बात का ध्यान विशेष हम करें, जहाँ पर भी विशेष रूप से रासायनिक जो दवाई है उनका यदि रासायनिक विधियों से प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारी फसल तैयार हो रही है, जो भी हमारी सब्जी फसलें तैयार हो रही हैं, पहले उनको तोड़ लें और फिर उस जो स्प्रे है वो करें। उसमें एक बात का तो ये ध्यान रखें भाई, जितनी मात्रा में दवाई बताई गई है दवाई सिर्फ उतनी लें, क्योंकि कुछ किसान भाई के करें हैं अपनी मर्जी से कई बार तो दुगनी दुगनी जो दवाई है वो मार दें, उसका कोई भी फायदा नहीं है। जितनी मात्रा में रिकमेंड करी गई है दवाई सिर्फ उतनी दवाई लेनी है, और जो पानी की मात्रा है वो पानी की मात्रा भी हमने पूरी लेनी है। उसमें ये नहीं करना कि भाई चलो इसमें काम चल गया, काम नहीं, जितना पानी की ज़रूरत है उस दवाई को उतना ही पानी हमने लेना है, क्योंकि कम पानी कई बार हो है तो जो पत्ते हैं उनके नीचे जो कीड़े हैं वो छिपे रह जाए और फिर जो पूरा काम है वो नहीं हो पाता। इसलिए भाइयों इन कुछ चीज़ों का हमने ध्यान देना है। और समय रह गया तो बात करेंगे, उस तो पहले सुनेंगे रागनी मुनिगर पावड़िया और उनके साथियों की गाई हुई।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

तो भजन ये सुनी रागनी मुनिगर पावड़ी और उनके साथियों की गाई हुई भाई जो खेत खलिहान कार्यक्रम है उसका होया समय समाप्त। शाम 6:20 पर भजन फिर मिलेंगे। सारे बाण भजन राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा संपन्न होती है। हालांकि एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले अभी जारी है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी रोहतक की आज की तीसरी प्रसारण सभा लेकर आपसे मिलने एक बार फिर आएंगे आज शाम 5:30 पर। अब अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 5:30 और 18 सेकंड हुए हैं। हमारी तीसरी सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

0: कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे सभी श्रोताओं को अंजलि का नमस्कार
1: और साथ ही आप सभी को आपकी साथी नंदिनी का भी नमस्कार।
0: साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात कर लेते हैं सतत पाक कला दिवस के बारे में, यानी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस, जो कि 18 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ ऐसा खान पान जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हो। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है भोजन की कला या संस्कृति, और सस्टेनेबल का मतलब होता है प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का उपयोग करना। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भोजन के उत्पादन से लेकर प्लेट तक पहुंचने की प्रक्रिया में पर्यावरण, कृषि, स्थानीय संस्कृति को कोई नुकसान न पहुँचे। इसमें स्थानीय स्तर पर अपनाए गए मौसम और उसके अनुसार मिलने वाले फल सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें भोजन को दूर से लाने में होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भोजन की बर्बादी को कम करना और बचे हुए भोजन और छिलकों का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। इसमें रसायनों और कीटनाशकों के बिना प्राकृतिक रूप से अनाज उगाया जाता है, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित नहीं होते। आज दुनिया भर में उत्पादन के तरीकों के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, पानी की भारी कमी हो रही है। खान पान और रसायनों के उपयोग से इंसानों में बीमारियां बढ़ रही है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुद्ध भोजन पानी बचा रहे। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी केवल एक विचार नहीं, बल्कि यह एक जिम्मेदार जीवन शैली है। यदि हम सब अपने घर से स्थानीय और सही भोजन चुनेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पृथ्वी भी सुरक्षित होगी।
1: आपने बिल्कुल सही कहा अंजलि, और साथ ही इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ऐसे खाद्य उत्पादन और उपभोग के प्रति जागरूक करना है जो पर्यावरण के अनुकूल, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा सामाजिक रूप से उत्तरदायी हों।
0: जी,
1: संयुक्त राष्ट्र महासभा इस दिवस को मान्यता दी गई है ताकि खाद्य सुरक्षा, पोषण, जैव विविधता संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जा सके। गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ केवल भोजन पकाने की कला नहीं है, बल्कि भोजन की उत्पत्ति, उसकी संस्कृति, परंपराओं और पर्यावरण पर उसके प्रभाव को समझना भी है। सतत पाक कला स्थानीय और मौसमी खाद्य उत्पादों के उपयोग, खाद्य अपशिष्ट को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा किसानों और स्थानीय समुदाय के समर्थन पर बल देती है। ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि भोजन केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण, संस्कृति और समाज से गहराई से जुड़ा हुआ है। यदि हम जिम्मेदारी पूर्वक भोजन का चयन और उपयोग करें तो हम पृथ्वी के संसाधनों की रक्षा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और एक बार अंजलि, हम फिर से कह सकते हैं कि अच्छा भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि प्रकृति और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।
0: जी बिल्कुल नंदिनी, इसके साथ सुनवा देते हैं हमारे सभी साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म कलयुग से, जिसे गाया है आतिफ असलम ने, गीतकार हैं साहिद कवादरी, संगीत दिया है मिथुन शर्मा ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म कलयुग से, जिसे गाया था आतिफ असलम ने।
1: जी बिल्कुल अंजलि, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं।

0: आज एक और दिवस भी हम मना रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि, जो कि भारत की महान वीरांगना और स्वतंत्रता संग्राम की अग्रणी नायिका रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में मनाई जाती है। उनका निधन 18 जून यानी आज के दिन को 1858 को ग्वालियर के निकट ब्रिटिश सेना के विरुद्ध युद्ध करते हुए हुआ था। उनका जन्म 19 नवंबर वर्ष 1828 को वाराणसी में हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध साहस, नेतृत्व और देशभक्ति का परिचय दिया। जब अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार करने का प्रयास किया, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ वीरतापूर्वक संघर्ष किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का संकल्प लेकर युद्ध भूमि में डटी रही। उनकी वीरता, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय इतिहास में अमर बना दिया। उनकी पुण्यतिथि पर देश भर में श्रद्धांजलि सभाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिताएं तथा स्मरण समारोह आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस हमें साहस, आत्मविश्वास, राष्ट्रप्रेम और नारी शक्ति की प्रेरणा देता है। साथ ही प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने उनकी वीरता का वर्णन इन पंक्तियों में भी किया है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी।
1: जी बिल्कुल नंदिनी, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म जैसा कि आपने भी बताया 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था और प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। मनु बचपन से ही पारंपरिक कार्यों की बजाय घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी और युद्ध कला की शिक्षा लेती थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ा। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत उनके पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। इस अन्याय के खिलाफ लक्ष्मीबाई ने ऐतिहासिक नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड क्षेत्र की कमान संभाली। उन्होंने अपनी महिला सेना तैयार की और अंग्रेजों को बार बार हराया। जब विश्वासघातियों के कारण अंग्रेजी सेना झांसी के किले में घुस गई, तो रानी अपने छोटे बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले की ऊंची दीवार को कूद गई और झांसी से निकलकर ग्वालियर पहुंची, जहां वे तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर अधिकार उन्होंने कर लिया। 17-18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना के साथ रानी का अंतिम और सबसे भयानक युद्ध हुआ। उन्होंने अंग्रेजी सैनिकों से भयानक युद्ध किया। युद्ध के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गई। वे नहीं चाहती थी कि उनका शव अंग्रेजों के हाथ लगे, इसीलिए एक संत कुटिया में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा करने के लिए वे शस्त्र भी उठा सकती हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा। रानी लक्ष्मीबाई केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और राष्ट्र प्रेम की अमर गाथा हैं। उनका अदम्य पराक्रम आज भी हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति की ज्योति प्रज्वलित करता है। तो आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। और कार्यक्रम को अंजलि आगे बढ़ाते हुए सुनवा देते हैं अपने साथियों को ये अगला गीत, जो है फिल्म अनजाना अनजानी से। गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, गीत के बोल लिखे हैं विशाल शेखर ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: अभी आपने सुना ये गीत जो था फिल्म अनजाना अनजानी से, गाया था राहत फतेह अली खान ने, गीत संगीत था विशाल शेखर का।
1: साथियों, अब कार्यक्रम में बात कर लेते हैं गुरु अर्जन देव की पुण्यतिथि के बारे में। सिख इतिहास में गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस एक अत्यंत महत्वपूर्ण और भावुक कर देने वाला दिन है। वे सिख धर्म के पहले गुरु थे जिन्होंने धर्म, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हें शहीदों के सरताज और शांति के पुंज के रूप में याद किया जाता है। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी थे। उनकी माता का नाम बीबी भानी जी था। वे बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और तीव्र बुद्धि के धनी थे। उनकी इसी योग्यता को देखते हुए गुरु रामदास जी ने उन्हें 1581 में सिखों के पांचवें गुरु के रूप में गद्दी सौंपी। गुरु अर्जन देव जी का गुरु काल सिख धर्म के विकास के लिए स्वर्ण काल माना जाता है। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब की नींव एक सूफी संत मियां मीर से रखाई, जिसके चार दरवाजे थे और चारों दिशाओं में चार दरवाजे इस बात का प्रतीक थे कि यह मंदिर बिना किसी जातीय भेदभाव के हर इंसान के लिए खुला है। उन्होंने 1604 में सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संपादन किया। इसमें उन्होंने पहले चार गुरुओं की बाणी के साथ कबीर, फरीद, नामदेव, रविदास जैसे विभिन्न धर्मों के संतों की बाणी को भी शामिल किया, जो उनके धर्मनिरपेक्ष सोच को दर्शाते हैं। उन्होंने सुखमनी साहिब जैसी महान और पवित्र बाणी की रचना की, जो मन को शांत और सुख देने वाली है। उन्होंने सिखाया कि शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन सत्य और धर्म कभी नहीं मरते। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनको नमन करते हुए उनके द्वारा दिए गए शांति, सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि। साथ ही वो सिख धर्म के ऐसे महान गुरु थे जिन्होंने आध्यात्मिकता, मानवता, सेवा और समानता के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। साथ ही अर्जुन देव जी ने अमृतसर में स्थित पवित्र हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में उन्हें अपने धार्मिक सिद्धांतों और सत्य के मार्ग से हटने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1606 में उन्हें कठोर यातनाएं दी गई और उन्होंने धर्म तथा मानवता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत को सिख इतिहास की पहली महान शहादत माना जाता है। साथ ही उनका बलिदान आज भी मानवता, भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनके जीवन का संदेश था कि सभी मनुष्यों के साथ प्रेम, समानता और सेवा का व्यवहार करो, यही सच्ची भक्ति है।
1: जी बिल्कुल नंदिनी। और अब सुन लेते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, जो है फिल्म जब वी मेट से, जिसे गाया है उस्ताद राशिद खान ने। गीतकार हैं फैज़ अनवर, संगीत दिया है संदेश शांडिल्य ने।

0: साथियों, अभी आपने सुना ये गीत फिल्म जब वी मेट से, जिसे गाया था उस्ताद राशिद खान ने। साथियों, इसी के साथ समय हो चुका है कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने का। दीजिए अनुमति। नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट गोबा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल AI के CEO आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और CEO रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
4: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। LPG बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन LNG से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले 3 दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली NEET UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बॉम्बे शेयर बाजार का संविधि सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। लीजिए अब सुनिए आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज शाम 7:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला विरासत। वार्ताकार होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। रात 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइटर्स। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात 9:15 पर कार्यक्रम एक फिल्म से में आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म आए दिन बहार से कुछ चुनिंदा गीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर डॉक्टर महक के साथ बातचीत का विषय रहेगा ग्वार की सब्जी और दाने के लिए काश्त। ग्रामीण संसार में शाम 7:00 योग की क्रियाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर देवेंद्र खुराना। फिल्म संगीत का लुत्फ आप उठा सकेंगे शाम 7:45 पर और रात 10:00 कार्यक्रम मन चाहे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल प्रातः 7:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे। लोक संगीत कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर, गायक होंगे संतोष नाकिया। दूसरी सभा में दिन में 12:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा संसार शाम 5:30 पर। रात 9:30 पर आप सुनेंगे नाटक। शाम 7:30 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों में से एक विशेष श्रृंखला पर्यावरण। वार्ताकार होंगे भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर कृषि संबंधी समस्या व सुझाव पर फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर करम सिंह मलिक। शाम 7:00 ग्रामीण संसार में फोन इन कार्यक्रम जारी रहेगा। खेत कल्याण कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर व्यापारिक फूलों की काश्त विषय पर जानकारी दी जाएगी। फिल्म संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:00 कार्यक्रम एक रंग के अंतर्गत। दोपहर 1:10 पर कार्यक्रम आपके अनुरोध के अंतर्गत। शाम 7:45 पर और रात 10:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। अभी आप सुन रहे थे आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ स्थानीय सूचनाएं। थाना पटोदी जिला गुरुग्राम द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार भीम सिंह पुत्र बलवंत दिनांक 28/6/2023 से लापता हैं, जो थोड़ा मंदबुद्धि हैं। इनकी उम्र है 35 साल, कद 5'7". इनका हुलिया इस प्रकार है, रंग भूरा, चपटा चेहरा, पतला शरीर, माथे पर तिल का निशान। इन्होंने नीली जैकेट और सफ़ेद बनियान व सलेटी रंग का लोअर और काले रंग की चप्पल पहने हुए थे। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी मिले इस नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9899563448। एक बार नंबर फिर से दोहराएंगे, 9899563448। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। शाम के 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों का आकलन किया। अधिकारियों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से परीक्षा कराने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। हरियाणा में निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपये से अधिक रुपये आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजना का प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा उपायों, प्रबंधों और शिकायत निवारण तंत्रों की भी समीक्षा की गई। शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि निर्माण श्रमिकों के नए पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। इसके साथ ही उन श्रमिकों की सदस्यता नवीनीकरण प्रक्रिया भी पुनः शुरू कर दी गई है, जो सत्यापन एवं जांच प्रक्रिया के दौरान पात्र पाए गए थे। श्री विज ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचे तथा व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। इसी दृष्टिकोण से पूर्व में प्राप्त शिकायतों एवं अनियमितताओं की जांच के बाद अब संशोधित एवं अधिक मजबूत व्यवस्था के साथ पंजीकरण प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए और रागी जत्थों ने कीर्तन से संगतों को निहाल किया। गुरुद्वारों में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अखंड पाठ के भोग भी डाले गए। अंबाला के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बादशाही बाग और गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब में संगत ने बड़ी संख्या में पहुंचकर गुरु साहब को नमन किया और उनके दर्शाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अंबाला शहर के विभिन्न चौकों, बाजारों और प्रमुख मार्गों पर मीठे जल की छबीलें लगाई गईं। कई स्थानों पर गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। भिवानी के घंटाघर गुरुद्वारा सिंह सभा में भी शहीदों के सरताज पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी गुरुपर्व पर गुरबाणी कीर्तन एवं सुखमनी साहब के पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मीठे पानी की छबील व लंगर की सेवा भी की गई। आज श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की। मुख्यमंत्री ने देश व धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी के 420वें बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की एक अनवरत यात्रा है। आज विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में गुरु साहब की शिक्षाएं देश का मार्गदर्शन कर रही हैं।
1: प्यारी साध संगत जीओ, अज जदों असी देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे सक्षम नेतृत्व हेठे एक नवे भारत दे निर्माण कर रहे हां, असी देश नूं विकसित भारत बनाण दे संकल्प नाल अगे वध रहे हां, तां गुरु अर्जन देव जी दीआं सिक्ख्यावां साडा

0: ਵੱਡਾ ਸੰਬਲ ਬਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀਰ ਧਰਤੀ ਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹੈ।
1: उन्होंने कहा कि आज पूरा देश गुरु साहिबान को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुरुओं की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
0: ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਾਥੀਓ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਸਕਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰਿਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨਤਾ, ਸੇਵਾ, ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਏ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸਕੂਲ ਸੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋ ਜਾਨਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
0: ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਿਆਗ ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਆਦਰਸਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
1: उन्होंने कहा कि पंचकूला में 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने हाथों से दंगा पीड़ित परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे। हरियाणा सरकार मानव सेवा और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति के उत्थान को अपना परम धर्म मानती है। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर एक मजबूत और अखंड समाज का निर्माण करने में सहयोग करना होगा। कार्यक्रम के दौरान श्री गुरु अर्जन देव जी के जीवन पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। केंद्र सरकार गौरवमयी 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज जींद के हमेटी परिसर में किसान यात्रा एवं पशुधन सर्वधन सम्मेलन का आयोजन किया गया। जागरूकता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ढुल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. गिरीश नागपाल सहित जिले भर के अनेक प्रगतिशील किसान व विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री तेजेंद्र सिंह ढुल ने कहा कि आज की इस बहुआयामी कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और निरंतर कम हो रहे पशुधन को पुनर्जीवित करना था। कृषि वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने, प्राकृतिक उपचार के माध्यम से बीजों को शोधित करने तथा जैविक कीटनाशक तैयार करने की विधियों सहित बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। ड्रोन दीदी जैसे सफल योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार किसानों को बीज, उपकरण और खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने बताया कि विभाग द्वारा विभिन्न प्रगतिशील किसान संगठनों और सामुदायिक मार्गदर्शकों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूकता लाने के लिए तैयार किया जाता है।
2: आज के इसे के जागरूकता सम्मेलन में पूरे जिला से अलग अलग सब डिवीजन से किसान आए हैं। FPO के माध्यम से और दूसरे CRP हमारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को विभाग द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। वो आगे किसानों को तैयार करते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की तरफ वो अपनी खेती को मोड़ सकते हैं और दूसरे किसानों को प्रेरित कर सकते हैं।
1: कार्यशाला में किसानों द्वारा तैयार प्राकृतिक उत्पादों की भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। अंत में मुख्य

0: एजेंसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: दाने के लिए?
1: दाने के लिए सर इसमें हमारी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ही बहुत सारी किस्में हैं।
0: जी,
1: HG 75 करके एक वैरायटी है इसमें,
0: HG 75,
1: 75,
0: जी
1: एक HG 365 है, HD 563 है, HG 870 है, HG 2-20 है।
0: जी यानी कि कई किस्म है
1: हाँ
0: इसमें,
1: जी,
0: तो इनमें आमतौर पर पैदावार कितनी की मिल जाएगी?
1: इसमें अगर हम अधिकतम पैदावार बात करें जिसमें हम सारी सिफारिशें लगा के करें तो अधिकतम पैदावार इसमें हमारी 7 से 8 क्विंटल चली जाती है, लेकिन औसत पैदावार जो किसान अपने खेतों में ले रहा है वो लगभग 6 क्विंटल तक रहती है।
0: जी, तो इसमें कोई इसकी विशेषता है ये जो आपने दाने वाली किस्म बताई है इनमें?
1: ये जो हम इसमें जो HG 220 वेराइटी है, जो ये भारतवर्ष पूरे भारतवर्ष के लिए विकसित की गई किस्म है,
0: जी
1: और इसकी सबसे बड़ी खास विशेषता ये है कि ये ना जो पत्ता अंगमारी डिसीज़ होती है, बैक्टीरियल ब्लाइट जिसको हम बोलते हैं और अल्टरनेरिया ब्लाइट जिसको बोलते हैं, इन दोनों के लिए रोग प्रतिरोधी है ये किस्म।
0: बीमारी इनमें नहीं आती
1: हाँ
0: है।
1: जी, बीमारियाँ इसमें नहीं आती हैं।
0: जी, तो डॉक्टर साहब आपने दो मौसम बताए इसके, एक तो ग्रीष्मकालीन यानी
1: हाँ जी,
0: गर्मी का और एक बरसात का।
1: हाँ जी,
0: तो गर्मी वाला सीजन है, उसमें कब इसकी बिजाई करी जाए?
1: गर्मी वाले सीज़न में इसकी बिजाई लगभग फरवरी से मार्च में करनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ सब्जी के उत्पादन के लिए
0: सब्जी के
1: है।
0: लिए?
1: दाने
0: जी
1: के लिए इसकी जो हमें इसकी जो बिजाई है वो हमें इसके वर्षा वर्षा आने के बाद ही करनी चाहिए। तो
0: जी
1: उसके लिए जो बिजाई का टाइम, अगर हम दाने के लिए बात करते हैं तो दाने के लिए जो हमारी किस्में हैं उस पर निर्भर करता है कि हमें कब बिजाई करनी है। जो
0: जी
1: हमारी देर से पकने वाली किस्में हैं उनकी बिजाई हमें लगभग मध्य जुलाई तक करनी चाहिए। ठीक है,
0: जी देर से पकने वाली में किस समय तक का आप मानते हैं?
1: देर से पकने वाली किस्में जैसे कि जो हमारी 110 से 115 दिन तक में पक के तैयार होती है जो किस्म, वो
0: जी
1: हमारी देर से पकने वाली है। जो हमारी जल्दी पकने वाली किस्में हैं वो हमारी रह जाती है 85 से 100 दिन के अंदर।
0: अच्छा,
1: तो अगर हम देर से पकने वाली किस्में की बात करें तो इसमें HG 75 करके देर से किस्म पकने वाली किस्म है, और इसके अलावा जो मैंने किस्में बताई है HG 220, HG 870, HG 884, ये हमारी जल्दी पकने वाली किस्में हैं। तो इनका पकने की अवधि लगभग 80 से 100 दिन रहती है।
0: जी यानी लगभग 3 महीने के करीब
1: हाँ जी,
0: ये तैयार हो जाए।
1: हाँ जी,
0: तो इसमें बिजाई का के कुछ तरीका रहेगा, और बीज की मात्रा कितनी चाहिए हमने?
1: इसमें सबसे पहले तो अगर हम बिजाई के तरीके की बात करें तो वर्षा आधारित क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बरानी क्षेत्रों में मतलब ज़्यादातर उगाई जाती है। शुष्क शुष्क क्षेत्रों के लिए ये एक मतलब
0: सिफारिश के लिए?
1: सिफारिश की गई फसल है।
0: जी
1: तो इसमें हमारा जो पोरा मेथड जो होता है, पोरा विधि जो होती है, उसके द्वारा हमें बिजाई करनी चाहिए, और जो खुड से खुड की दूरी है वो हमें 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए।
0: यानी 1.5 फुट का
1: हाँ जी,
0: खुड़ तक खुड़ का फासला रखना है,
1: हाँ जी,
0: 1.5 फुट
1: और
0: का।
1: पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो बीज का जो गहराई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पे डालना चाहिए बीज को,
0: जी
1: पोरा विधि से बिजाई करके। और अगर बीज की मात्रा की बात करें तो इसमें हमें 5 से 6 किलो बीज पर एकड़ हमें चाहिए होता है, लेकिन जो हमारी जल्दी पकने वाली किस्में हैं उसके लिए हमें बीज की जो हमारी जल्दी पकने वाली किस्में हैं उसके लिए हमें 7 से 8 किलो बीज की सिफारिश की गई है पर एकड़।
0: जल्दी पकने वाले के लिए बीज
1: जी,
0: ज़्यादा।
1: हाँ जी,
0: अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने किस्में बताई हैं ये आम दुकानदार पे या कौन सी जगह पे मिल जाएगा इनका बीज?
1: ये हमारे जो ज़्यादातर मैंने किस्में बताई है ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित की गई है।
0: जी
1: तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किसान सेवा केंद्र से और जो रामधन सीड फार्म है वहाँ से मिल जाएगी,
0: हिसार से?
1: हिसार से। हाँ जी,
0: जी, तो इसमें बिजाई से पहले किसी प्रकार का उपचार भी करना पड़ेगा?
1: हाँ जी, इसमें दो हमें उपचार करने पड़ते हैं।
0: जी
1: तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें पहले किस चीज़ का उपचार करना है। पहले हमें जो है दवाई का उपचार करने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें बायोटिका का उपचार करना है।
0: जी
1: तो अगर हम दवाई का, इसमें एक बीमारी आती है बैक्टीरियल ब्लाइट जो मतलब बहुत ज़्यादा इसका नुकसान कर देती है पूरी फसल का, लगभग 55 दिन के आसपास उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो हमें शुरू से ही उसका ध्यान रखना पड़ता है।
0: जी
1: तो
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक समीक्षा आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: FM 107.2 MHz ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है एनडीए सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में कृषि विकास पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है हरियाणा में मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र में हुए विकास को लेकर कृषि विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कृषि वैज्ञानिकों से बातचीत और योजनाओं का लाभ उठा रहे किसानों के अनुभव। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन में सुधार करना और खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना रहा है। कृषि क्षेत्र में हुए विकास को लेकर जींद में कृषि वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र हुड्डा ने विभिन्न योजनाओं पर बातचीत की। कृषि अवसंरचना कोष से हुए फायदे को लेकर उन्होंने कहा,
2: पिछले 12 वर्षों में कृषि अवसंरचना कोष IAF के माध्यम से वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयों और कृषि आपूर्ति श्रृंखला के विकास को बढ़ावा दिया गया। 1,00,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए 66,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई, जिससे फसल कटाई के बाद नुकसान में कमी आई। इससे किसानों को अपनी उपज का सुरक्षित भंडारण करने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिली। इसी प्रकार कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल तथा अन्य कृषि मशीनों की खरीद पर 50% से 80% तक सब्सिडी प्रदान की गई। कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हुई, जिससे कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा, श्रम की लागत में कमी और समय की बचत हुई।
1: डॉक्टर हुडा ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जैविक खेती को प्रोत्साहन ने किसानों को लाभ पहुंचाया है।
2: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया गया। इससे लगभग 15,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित हुई, जल उपयोग दक्षता में सुधार हुआ और पानी की बर्बादी कम हुई तथा कम पानी में अधिक उत्पादन संभव हुआ। परंपरागत कृषि विकास योजना ने जैविक खेती को प्रोत्साहित किया, जिससे रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा मिला, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ और किसानों को जैविक उत्पादों के बेहतर दाम मिलने लगे और जैविक उत्पादों का विपणन भी आसान हुआ।
1: उन्होंने कहा कि ई नाम ने डिजिटल क्रांति लाने का काम किया और फसल बेचना आसान किया।
2: राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम ने कृषि विपणन व्यवस्था में डिजिटल क्रांति लाने का कार्य किया है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर की मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ी, बिचौलियों की भूमिका कम हुई तथा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होने लगा है।
1: डॉक्टर हुडा ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड ने किसानों का खादों पर खर्च कम किया।
2: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान की गई। इससे खादों का संतुलित उपयोग संभव हुआ, जिससे खेती की लागत कम हुई और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।
1: जींद में ही बागवानी विभाग के अधिकारी डॉक्टर खयाली राम ने कहा कि गत 12 वर्षों में खेती को आधुनिक एवं लाभकारी बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
3: खेती को आधुनिक तथा फायदेमंद बनाने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं का संचालन किया गया है। आधुनिक मशीनों तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गांव-गांव में सुमम योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके साथ साथ सोयल हेल्थ कार्ड योजना मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। इससे खेती में रासायनिक खादों का उचित उपयोग सुनिश्चित हुआ है। इसके साथ साथ किसानों को मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों की जानकारी भी उपलब्ध हो पाई है। महिला किसानों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रशिक्षण प्रदान किए जाने के साथ साथ सब्सिडी पर ड्रोन भी उपलब्ध करवाए गए हैं। इससे खेती के काम में समय की बचत भी हुई है तथा फसल का स्वास्थ्य भी सुनिश्चित हुआ है।
1: अन्य कई योजनाओं का जिक्र करते हुए डॉक्टर खयाली राम ने कहा,
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कम पानी वाले इलाकों के लिए अत्यंत रामबाण योजना साबित हुई है। जहां कभी रेत के टीलों के अलावा कुछ भी नहीं था, वहां आज ड्रिप सिंचाई के माध्यम से बागवानी फसलें लहलहा उठी हैं। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भूजल स्तर में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। इसके साथ साथ ई नाम योजना के माध्यम से किसानों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। इससे उन्हें फसल का उचित दाम मिला है।

0: तथा इसके साथ साथ उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से फसल की राशि का भुगतान भी सुनिश्चित हुआ है। ऐसी अनेक योजनाएं पिछले 12 सालों में सरकार के माध्यम से संचालित की गई हैं, जिससे खेती जो कभी घाटे का सौदा कही जाती थी आज फायदे का सौदा साबित हुई है।
1: पंचकुला में कृषि विभाग के अधिकारी राहुल वालिया ने कहा कि ये 12वां वर्ष आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के निर्माण में अहम रहे हैं।
2: गत 12 वर्षों में हरियाणा में कृषि क्षेत्र में आधुनिक अवसंरचना के विकास को एक भूतपूर्व गति मिली है। कृषि क्षेत्र को आधुनिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा AIF कृषि अवसंरचना कोष का 2020 में गठन किया गया। इसके अंतर्गत गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, छटाई एवं ग्रेडिंग इकाइयों द्वारा कस्टम हायरिंग जैसी सुविधाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों को इस योजना से बड़ा लाभ मिला है। हरियाणा में इस योजना के अंतर्गत अब तक 5390 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है तथा 11,000 से अधिक लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं। कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक कृषि सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
1: नमो ड्रोन दीदी योजना ने न केवल महिलाओं को सशक्त किया है बल्कि किसान के लिए भी मददगार साबित हुई है। हिसार में जिला ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद ने जिले में इस योजना से हुए लाभ की जानकारी दी।
3: जिला हिसार में वर्तमान में 7 नमो ड्रोन दीदी हैं, जिन्होंने पिछले सेशन में 2025-26 के दौरान लगभग 1300 एकड़ में दवाई का छिड़काव किया है और इससे जो उनकी आमदनी है लगभग 8,80,000 रुपए की उनको आमदनी हुई है, जिसमें सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 300 रुपए की सहायता राशि उनको दी जाती है और 100 रुपए की जो राशि है वो किसान के द्वारा दी जाती है। सरकार की जो यह स्कीम है वह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध हुई है। सरकार ने ड्रोन दीदी के लिए और भी एक स्कीम और लॉन्च की है, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, यदि वो 10वीं पास हैं तो वो ड्रोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो दवाई का छिड़काव है ड्रोन के द्वारा बहुत सही तरीके से किया जाता है। किसानों को जो लाभ होता है उसकी पैदावार बढ़ती है, जो कीटनाशक है उनका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा एरिया में प्रयोग होता है।
1: कैथल के कृषि विभाग के अधिकारी जगदीश मलिक ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में भी निर्णायक काम हुआ है।
4: सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के लिए काफी योजनाएं चलाई गई हैं। पिछले काफी वर्षों से किसानों के लिए धान कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों का प्रबंधन करना चुनौती बन गया था, क्योंकि इसके लिए कोई व्यापक योजना नहीं थी। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम चलाई गई, जिसके तहत किसानों को फसल अवशेषों का प्रबंधन करने के लिए कृषि यंत्रों पर 50% से 80% तक अनुदान दिया गया। इस स्कीम के तहत जिला कैथल में अक्टूबर 2014 से अब तक 13,500 कृषि यंत्रों पर लगभग 485 करोड़ रुपए किसानों को अनुदान के रूप में दिए गए। इसके अतिरिक्त लगभग 1,30,000 किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 131 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। यह स्कीम बहुत प्रेरणादायक साबित हुई, जिससे हमारे जो पराली में आग लगने की घटनाएं हैं वो बहुत कम हुई है।
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की प्रगति को लेकर पंचकुला में संयुक्त निदेशक अश्विनी शर्मा ने बताया,
5: हरियाणा सरकार द्वारा 1,52,79,049 सैंपलों की टेस्टिंग कर ली गई है। पहले ये कार्ड हम किसानों को फिजिकली जाके वितरित करते थे, हम इसको व्हाट्सएप पर ले आए हैं। 12 सालों के अंदर अंदर हमने 17 नई भूमि परीक्षण लैब स्थापित करी हैं, जो कि मंडियों में हैं, जिससे किसान जैसे ही मंडी में जाता है वहाँ सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करवा सकता है। इससे किसानों को काफी फायदा मिल रहा है।
1: हमने कृषि योजनाओं का लाभ लेने वाले कुछ किसानों से भी बातचीत की। कुरुक्षेत्र के गांव रामसरण माजरा के किसान आत्माराम ने कहा,
6: यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम किसानों के लिए बहुत अच्छे अच्छे योजनाएं चलाई हैं। किसानों के आमदनी बढ़ाने के लिए मिट्टी की जांच करवाई गई है, हमें कार्ड दिए गए हैं और मिट्टी की जांच से हम किसानों को इतना फायदा हो रहा है, जिससे हम अपने खेत में जो उन्होंने रिकॉर्ड दिया है, जो खाद हमने डालनी है या देसी खाद डालनी है तो उसके मुताबिक हम खाद डालते हैं, जिससे हमारा खर्च भी कम होता है, एक्स्ट्रा खाद नहीं डलता।
1: कुरुक्षेत्र के गांव बाहरी से किसान शंकर ने भी मृदा स्वास्थ्य योजना की प्रशंसा की।
7: मिट्टी जांच में पाया कि मेरी खेती में किस चीज की जरूरत है, वरना मैं अपनी खेती में बेफजूल कीटनाशक बहुत डाल देता। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिससे मुझे बहुत फायदा मिला है, और जैसे अब ढैचा मूंग की खेती के लिए मुझे गाइडनेस किया गया कि आप ढैचा मूंग की खेती कीजिए, जिससे कि खेती में मिट्टी का सुधार होगा, और जैसे हमारा पीएच वैल्यू थोड़ा ज्यादा क्षारीय की तरफ हो रहा है, 7.6 कुछ निकल रहा है, तो उससे हमारी खेती का 7 के आसपास हो जाएगा।
1: इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
8: उसके लिए हमें क्या करना है, 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है, उसको 6 लीटर पानी में घोल लेना है।
9: सिर्फ 6 ग्राम?
8: हाँ जी, 6 ग्राम
9: स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बताया आपने,
8: 6 लीटर पानी में उसको घोल लेना है।
9: 6 लीटर पानी में घोल,
8: हाँ। और फिर उसको हमें क्या करना है, 6 किलो बीज, मतलब 1 एकड़ का जो बीज है उसको उसमें हमें डुबो के रखना है लगभग 25 से 30 मिनट के लिए,
9: आधे घंटा लगे।
8: हाँ जी
9: जी।
8: उसके बाद हमें 30 से 40 मिनट के लिए उस बीज को निकाल लेना है वहां से, और उसको हमें छाया में सुखा के रखना है। तो 30 से 40 मिनट सुखाने के बाद हमें उसके बाद हमें राइजोबियम के टीका से उसका ट्रीटमेंट, मतलब बीजोपचार करना है। राइजोबियम का बीजोपचार हम कैसे करेंगे, 50 ml की जो हमारी राइजोबियम बायोटीका की शीशी मिलती है पर एकड़ बीज के लिए
9: जी,
8: तो वो हमें मिल जाएगी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, वो हम वहाँ पे अवेलेबल है ये चीज़। और इसमें क्या करना है, हमें 2 कप पानी लेना है, उसमें 50 ग्राम गुड़ लेना है, उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें 1 एकड़ का बीज डाल देना है, और फिर उसके बाद उसको जैगरी का जो सॉल्यूशन बना उसको 1 एकड़ बीज में डाल दिया, फिर
9: गुड़ का घोल
8: बना उसमें हमने 1 एकड़ का बीज डाल दिया, उसके बाद उसको निकाल लेना है, और उसके ऊपर हमने जो 50 ml की जो शीशी ली है उसको छिड़काव करना है राइजोबियम बायोटिका का, और फिर उसको हमें 20-25 मिनट के लिए छाया में सुखाना है, और फिर हमें बीज को बिजाई के लिए उपयोग करना है।
9: डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया कि राइजोबियम का टीका लगाना, इसका क्या कुछ फायदा रहेगा?
8: इसका फायदा ये है कि ये एक हमारा बायोटिका जो होता है, ये हमारे जो सोयल से जो न्यूट्रिएंट, जो हमारे खाद्य जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अच्छे से लेने में मदद करता है। ये एक हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो कि फसल की मदद करते हैं सोयल से जो हमारे जो न्यूट्रिएंट खाद है, खाद के जो तत्व है उनको लेने में,
9: यानी कि जो हमारी दाल वाली फसलें हैं उसमें जो बायोटिका लगाया कर रहे हैं वो ही इसमें इस्तेमाल कर सके हैं। उसमें ये है कि भी जड़ों में इसकी गांठ बने हैं और उसमें वो नाइट्रोजन की मात्रा है वो उनकी भरपूर हो जाए। तो एक तो टीका हम लगा दें, दोनों आपने बताए, पहले तो बीमारी के लिए और फिर दूसरा आपने राइजोबियम का टीका बताया, इसमें उसके बाद हमने इसकी बिजाई करनी है।
8: हाँ जी।
9: तो बिजाई का क्या कुछ तरीका रहेगा, पहले पानी दे के लगावें कि बाद में दें, या किस तरह सही रहेगा?
8: इसमें हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी है ना वो अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए जब हम बिजाई करते हैं, तो
9: पानी खड़ा ना हो।
8: हाँ जी, पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, और 2 से 3 जुताई करके हमें खेत को तैयार करना है बिजाई करने से पहले, और उसमें पानी लगाना है। बिजाई से पहले हमें ये ध्यान रखना है जो हमारी भूमि है वो हमारी समतल हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी हो, और उसमें खरपतवार नहीं होने चाहिए। ये 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है
9: जी। उसके बाद में उसकी
8: बिजाई, उसके बाद उसकी बिजाई,
9: तो जब बिजाई करेंगे तो उससे पहले कोई खाद की मात्रा भी देनी पड़ेगी?
8: वो उससे पहले उसके लिए खाद की मात्रा डालनी पड़ती है। इसमें जो हमारा है कि 8 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो फॉस्फोरस, ये है, तो इससे हमें 18 किलो यूरिया देना पड़ेगा इसकी ये मात्रा पूरी करने के लिए, और लगभग 100 किलो हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट देना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे अभी नहीं इतना मिल पाता, तो उसके लिए डीएपी की अगर हम मात्रा की बात करें तो हमें 35 किलो डीएपी देना पड़ेगा और 5 किलो यूरिया डालना पड़ेगा
9: जी। तो ये सारी मात्रा हमें शुरू में देनी है या इसके भी इससे करके देनी है?
8: ये हमें, क्योंकि ये एक दलहनी फसलों में आती है, तो इसकी हमें सारी मात्रा ही हमें बिजाई के समय ही देनी, बिजाई से पहले
9: यूरिया की और
8: डीएपी की
9: दोनों,
8: हाँ,
9: हमने पहले देनी है।
8: हाँ जी
9: जी। इसके बाद पानी का इसमें किस तरह के हिसाब किताब रखना पड़ेगा, कितने पानी हमें इसमें जरूरत पड़ेगी?
8: वैसे तो इसमें देखा जाए तो ये हम वर्षा निर्धारित क्षेत्रों में लगा रहे हैं, जुलाई तक इसकी हम बिजाई कर रहे हैं, तो पानी जो पहला पानी हम दे रहे हैं वो बारिश आने के बाद ही हम इसकी बिजाई करते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से फलियां बनने के समय पे बारिश नहीं हो पाई है, लगभग 55 दिन के आसपास फलियां आ जाती है, तो फिर हमें उस टाइम पे पानी देने की आवश्यकता है।
9: जी, तो कुल कितने पानी की जरूरत पड़ेगी?
8: इसमें हमें एक ही पानी की जरूरत,
9: एक पानी का काम चल जाएगा। अच्छा, तो इसमें जब दाना बनेगा तो कितने एक दिन में

0: दाना बनने तक वो हमारी फसल पहुंच जाएगी, और फिर उसका तोड़ाई वगैरह का वो की कुछ प्रबंध रहेगा।
1: इसमें क्या है, हमें अगर हम सब्जी के लिए बात करें तो
0: जी
1: सब्जियों के लिए तो हमें 60 से 90 दिन के अंदर अंदर इसकी मतलब जब फलियां हरी होती है तभी फलियों को थोड़ा सा घुमा के तोड़ लेना चाहिए, और एक ही टाइम पे जो फलियां थोड़ी सी हरी और कच्ची रह जाए उनको ही लेना चाहिए।
0: जी
1: 60 दिन के बाद बात करना चाहिए, 60 से 90 दिन के अंदर अंदर।
0: यानी लगभग 2 महीने के बाद ये
1: हाँ
0: तुड़ाई
1: जी,
0: के लिए तैयार हो जाए
1: हाँ जी,
0: सब्जी के लिए।
1: सब्जी के लिए।
0: जी
1: और फिर उनको हमें जब तोड़ते टाइम ये ध्यान रखना है कि हमारी जो फसल है उसको हम घुमा के, फलियों को हम घुमा कर तोड़ें।
0: जी
1: और अगर हम उसकी बात करें दाने के लिए, अगर हम बात करें तो लगभग 90 दिन, 90 से 100 दिन के बाद हमारी जो फसल है वो तैयार होती है, दाना उसमें हरा पक पक जाता है।
0: जी
1: तो उसमें क्या है, पत्तियां पीली पड़ जाती है और जो हमारा जो फलियां होती है वो भूरे रंग की हो जाती है।
0: जी
1: तब हमें उसकी मतलब तब हमें उसको मतलब कि काट देना चाहिए। और फिर काटने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसको थोड़े दिनों के लिए हम उसको सुखाएं ताकि उसमें नमी ना रहे, और फिर उसको हम गहाई करें मतलब थ्रेशर से थ्रेशिंग करवाएं उसको। और फिर उसके बाद हम ये भंडारण करने से पहले हम इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो बीज है उसमें 8 से 9% तक ही नमी हो, उससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए।
0: जी डॉक्टर साहब, इसमें कोई कीड़े बीमारी का भी प्रकोप रहा है?
1: हाँ जी, इसमें मैंने जैसे पहले ही बताया कि बैक्टीरियल ब्लाइट एक बीमारी आती है, तो उसमें पहले सबसे पहले तो हमें बीजोपचार ही करना है कि ना ही आए।
0: जी
1: अगर फिर भी अगर किसी वजह से मतलब आ जाती है 55 दिन के आसपास इसके मतलब लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लक्षण कैसे होते हैं कि उस पे काले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, और जैसे जैसे,
0: पत्तों पर?
1: हाँ जी, पत्तों
0: जी
1: पर बनते हैं, और जैसे जैसे नमी की मात्रा, क्योंकि वर्षा निर्धारित क्षेत्रों में हम लगा रहे हैं तो नमी होगी,
0: जी
1: जैसे जैसे नमी की मात्रा बढ़ती जाती है फसल पे बारिश आने के बाद, तो क्या होता है वो जो पत्ते, वो जो दान, वो जो काले धब्बे होते हैं वो आपस में मिलके बड़े आकार के हो जाते हैं,
0: जी
1: और कभी कभी क्या होता है ये फलियों पर भी पहुंच जाते हैं धब्बे। और इसके लिए हमने मतलब इसका उपचार क्या करना है, लगभग 55 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो 55 दिन के बाद क्या करना है, इसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेनी है 30 ग्राम,
0: जी
1: प्लस में इसमें लेना कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम। इनको हमें मिक्स करके 200 लीटर पानी में मिला करके 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना है 55 दिन के बाद।
0: जी
1: और
0: उसमें भी मतलब थोड़ा सा ध्यान रख लें भाई कि बारिश का मौसम ना हो, तो वो
1: हाँ
0: थोड़ा
1: जी,
0: सा
1: बारिश
0: बचा
1: का
0: के।
1: मौसम नहीं होना चाहिए क्योंकि
0: जी
1: वरना वो दवाई धुल जाएगी तो कोई फायदा नहीं है
0: जी
1: उसका।
0: और कोई कीड़े की समस्या?
1: कीड़ा इसमें मुख्यतः तेला, जो हरा तेला जिसको बोलते हैं वो आता है।
0: जी
1: उसके लिए क्या है, मेलाथियोन दवाई का स्प्रे करते हैं। ये जो हरा तेला होता है ये क्या करता है, पत्तियों के रस को चूसता है, तो उसमें उसमें भी मतलब पीलापन आना शुरू हो जाता है एक वक्त के बाद।
0: जी
1: तो उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करना है कि मेलाथियोन लेना है हमें 200 ml, 200 लीटर पानी में, 1 एकड़ के हिसाब से उसको हमें छिड़काव कर देना है।
0: दो
1: जब
0: सौ
1: हम,
0: मिलीलीटर दवाई लेनी है
1: हाँ जी,
0: और
1: 200 लीटर
0: दो
1: पानी
0: सौ
1: में,
0: लीटर पानी,
1: हाँ जी,
0: यानी कि 1 मिलीलीटर दवाई और 1 लीटर
1: 1 लीटर
0: पानी,
1: पानी,
0: इस हिसाब से
1: हाँ
0: अपना
1: जी,
0: छिड़काव कर दे भाई। जी तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया है कि अपने सब्जी के लिए और दाने के लिए दोनों तरह की काश्त करी जा सके, ऐसी फलदार किस्म है वो हम लें और अच्छी तरह से प्रबंध करें, हम खाद बीज का ध्यान रखें और पानी का ध्यान रखें और कोई कीड़ा बीमारी ना आवे तो अच्छी पैदावार हम इससे ले सकें। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर महक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत, इसमें डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी। वे जो गवार संबंधी हम सब्जियों की और दाने की जो फसल ले हुए हैं, तो उसमें यदि हम ये कुछ ध्यान रखें तो इसमें हम जो अपनी पैदावार है उसको भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से एक बात कही जाए भैया कि हम हमारा जो प्रबंधन है जितना अच्छा बढ़िया हो जाएगा उतनी हम पैदावार ज़्यादा ले सकते हैं। क्योंकि ये इसमें जैसे हम बताऊँ हैं, ये एक औसतन पैदावार होगा और इसको कुछ आगे भी बढ़ाया जा सके है, तो इन बातों का भी ध्यान करना है। रही बात देखो इस समय में जो हमारा पशुधन है, पशुधन की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम इस तरह का है और आगे आने वाला जो समय है वर्षा का, बरसात के मौसम में भी हमारा कुछ पशुओं संबंधी बातचीत हो है भाई, जो हमारे पशु हैं बारिश के मौसम में हमने उनका रख रखाव किस तरीके से करना है, गर्मी का मौसम आवे जब गर्मी के बारे में बात करें, और सर्दी का आवे तो सर्दी के बारे में बात करें, और जो चौमासे का मौसम हो है, बरसात का मौसम हो है, वो इस तरह का मौसम हो है कि भाई इसमें जो पशु का तापमान है वो थोड़ा हा बढ़ गया है, क्योंकि इसमें जो आर्द्रता है वो बढ़ी हुई है, और आर्द्रता के कारण कई बार पशु अपने आप को एक तनाव के रूप में महसूस

और जिसमें बरसात शुरू हो गया है उसमें जो गाय या भैंस हैं उनके अंदर विशेषकर जो गलघोंटू और फड़ सूजन की जो बीमारी है उनकी दिक्कत आनी शुरू हो गया है। उसमें गलघोंटू की हम बात करें, जो फड़ सूजन है उसकी बात करें, ये ऐसी बीमारी है यदि हम समय पर टीकाकरण नहीं करवाते तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाए इसमें, और उसके लिए हम टीके लगवा लें और ये जो हमारा प्रबंधन है ये पहले हुआ। क्योंकि देखो दो तीन चीज़ हैं भाई इसमें, एक तो पशुओं में टीकाकरण कराना, वो हर पशु के लिए ज़रूरी है, चाहे उसमें हमारी भेड़ बकरी ऊँट घोड़ा गधा या भैंस गाय जो भी है उनको हमने टीके लगवाने बहुत ज़रूरी है। और एक इसी प्रकार एक खेती बाड़ी में एक बार बार भैया तो सिफारिश ये करी जा है कि भाई अपना जो मिट्टी और पानी की जांच है वो हम ज़रूर करवाएं, क्योंकि हमारे मन में एक बात रहे है कि भाई पड़ोसी ने इतने कट्टे मार दिए तो मुझ तो एक फालतू मार दो, मार मेरी जो पैदावार है वो ज़्यादा निकलेगी, ये बिल्कुल गलत धारणा है हमारी। क्योंकि मान लो किसी के खेत में किसी चीज़ की कमी है, किसी के खेत में किसी चीज़ की कमी है, कोई किसी का ज़्यादा है कोई किसी का ज़्यादा है, तो हमने अपने खेत की तासीर के अनुसार खेती करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से उसको जो खाद है उसको पानी है उसको उर्वरक है उसको देसी खाद है वो उसके ऊपर निर्भर करे भाई हमारे खेत की जो तासीर है वो कैसी है। और उसके लिए ज़रूरी है कि भाई मिट्टी और पानी की जांच, मिट्टी और पानी की जांच बिल्कुल निःशुल्क हुआ है और अब भी मौका है, क्योंकि कुछ जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने तो धान लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो किसान भाई हैं वो लगभग जिस समय बरसात आवे है जहाँ पे पानी के ज़्यादा अच्छे साधन नहीं हैं सिर्फ ठीक ठाक है, वो मानसून की जो पहली बरसात आएगी उसके आधार पे ही अपना जो लाना है वो शुरू करें, या फिर वो 25 जून के बाद बाद लाना शुरू करें, 10 जुलाई तक 15 जुलाई तक लागे हैं। तो हमने इस बात का ध्यान रखना भाई जो अपनी ज़मीन है उसकी हम तासीर का कैसे पता लगाऊं, वह मिट्टी की और पानी की जांच करवा लें, कोई पानी में कमी है कोई ज़मीन में कमी है, कोई चीज़ पानी में बढ़ रही है कोई ज़मीन मिट्टी में बढ़ रही है, तो हमने उन दोनों का कराने में जिस खेत में जिस ट्यूबवेल का बोर का जो पानी लग गया है वो दोनों हमने कराने जरूरी हैं और दोनों निःशुल्क हैं, ये भी बात सही है, तो उसका भी हम फायदा उठाएं। और जो हम बात कर रहे थे पशुधन की, पशुधन के बारे में भी इसी तरह में हम ये कहें भाई हर एक जो पशुपालक भाई है उसने अपने पशुओं का टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है, यदि टीकाकरण नहीं करवाते तो फिर बाद में हम पछताएं कि भाई हमने टीके लगवा लेने चाहिए थे। कुछ भाइयों की एक धारणा बन गया है कि भाई हम जो मान लो पशु का टीका लगवाएंगे तो फिर वो दूध घट जाएगा, भाई 2 दिन घट लेगा, 3 दिन घट लेगा, 4 दिन घट लेगा, उसके बाद तो फिर वो पूरा दूध पा जाएगा, तो हम क्यों ना अपना जो पशु है उसको टीका लगवाऊँ, इस बात का ध्यान रखना। अपने पशु को हर रोज़ 50 ग्राम जो खनिज लवण मिश्रण है वो ज़रूर दें, नमक ज़रूर दें, और मान लो मौसम का हिसाब से कुछ हमने ठंड महसूस हो तो थोड़ा बहुत हम गुड़ भी दे सकते हैं, या जो पशु चिकित्सक है उसके संपर्क में हम जरूर रहें, क्योंकि भाई पशुधन बहुत महंगा हो रहा है और जितनी हम उसकी संभाल कराएंगे उतना ही ये कहा जा सके भाई जितनी संभाल कराएंगे उतनी ये कम है। तो जो पशुपालक भाई हैं वो अपना ये बात का ध्यान दें, और भाई वो जो कृषि जगत कार्यक्रम है इसको यहीं से मिटते हैं, ईब हम कार्यक्रम सुनेंगे ग्रामीण संसार। और भाइयों देखो ग्रामीण संसार में एक जो भैया ने बातचीत करा भाई जो योग दिवस है, योग दिवस अब बिल्कुल नज़दीक है और उसी के लिए ये ज़रूरी है कि जो योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, तो इसी उसमें जगबीर आर्य जी आए थे आज और उन्होंने बहुत अच्छी बढ़िया जानकारी दी योग के बारे में, तो भाई सुनो ये बातचीत है।

श्रोताओं, योग का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए लाभदायक है और कौन कौन से ध्यान, प्राणायाम और आसन हमें करने चाहिए, आज इसके बारे में बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमान जगवीर आर्या जी को। आप

0: जिलाध्यक्ष हैं भारत स्वाभिमान न्यास के, और गत 13 वर्ष से आप इस कार्य में संलग्न हैं, आप लगे हुए हैं और विभिन्न स्थानों पर आप लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। जगबीर आर्य जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: जी धन्यवाद। मैं जगबीर आर्य, जिलाध्यक्ष भारत स्वाभिमान न्यास रोहतक हरियाणा। आप द्वारा मुझे प्रसार भारती रोहतक हरियाणा में इस योग विषय पर आमंत्रित करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि आप हमारे समाज को, देश को, योग के विषय को किस प्रकार से हम अपने अपना करके योग को स्वस्थ रह सकते हैं
0: जी,
1: और अपनी दिनचर्या को एक सुखमय बना सकते हैं। देखिए, महर्षि पतंजलि जो हुए, हमारे ऋषि हुए, ऋषि मुनि हुए, उनकी देन है योग
0: जी।
1: और योग जो है, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की परिभाषा दिया है, उसमें कहा है योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है।
0: योग
1: और आसन जो बोलते हैं वो शिथिर सुखम आसनम
0: जी,
1: जिसमें हम सुखपूर्वक बैठ करके प्राणायाम कर सकें, वही आसन है। और सर्वप्रथम मैं प्राणायाम के विषय के बारे में बताता हूँ
0: जी।
1: और योग के वैसे तो 8 अध्याय होते हैं, 8 अंग होते हैं
0: जी,
1: एक 8 पाठ कह लीजिए, तो उसमें अष्टांग योग कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि
0: जी,
1: ये 8 अंग हैं। इसमें प्रथम जो योग का विषय है यम, तत्र अहिंसा सत्य सत्य ब्रह्मचर्य अप्रिग्रह यम, ये सूत्र बना रखें
0: जी
1: कि जहां अहिंसा कहते हैं, अहिंसा परमो धर्म है
0: जी,
1: धर्म हिंसा तदैच है, ये पूरा मंत्र हो गया
0: जी।
1: तो अहिंसा जो अहिंसक होना चाहिए योगी को, उसके अंदर हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगी आदमी के ऊपर कोई कुछ बोल भी देता है, अगर भाई तुम क्या करवा रहे हो
0: जी,
1: है ना, ये अच्छा नहीं है, तो योगी को विचलित नहीं होना। योग को, योगी को संयमित भाषा में रहते हुए अपने आप को योग सिखाना उसका मकसद है, जैसे डॉक्टर का पेशा है स्वस्थ करना
0: जी,
1: तो वैसे ही योगी का विषय है सबको स्वस्थ करना, योग सिखाना। और योग में यम का जो विषय है, इसमें अहिंसा सत्य सत्यवादी होना चाहिए, अस्थे चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए
0: जी,
1: अप्रिग्रह उसको ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, जिसकी वो मान लिए मेरे को एक जोड़ी जूते चप्पल से काम चल जा रहा है तो मेरे को 10-20 रखने की आवश्यकता नहीं, अप्रिग्रह करने से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, जरूरत आदमी को मिलता नहीं
0: जी।
1: इसलिए जिससे, जैसे कि गर्मी चल रही है तो हमें पानी, एक बाल्टी पानी में हमारा काम चल रहा है तो हमें 10 बाल्टी
0: भर
1: करके उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ताकि जरूरतमंद को मिलता रहे
0: जी।
1: तो योग का यम और उसके बाद नियम, नियम तत्र सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियम, सोच, सोच यानी कि शरीर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि हम कैसे करते हैं, एक तो शरीर को नहा धो करके शुद्धि कर देते हैं,
0: बाह्य शुद्धि,
1: हाँ बाह्य शुद्धि होगी वो
0: जी।
1: एक अष्टांग योग अंदर अंदर अंदर की शुद्धि होती है, अभ्यंतर और बाह्य
0: जी।
1: तो शुद्धि जो है, कहते हैं कि भाई मन जो है शुद्ध होना चाहिए, मन है सत्यन शुद्ध्यन्ति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यन्ति, तो ये सूत्र बना रखे हैं
0: जी।
1: तो इनके द्वारा हम उस व्याख्या, उस चीज को हम एक एक लेसन को पढ़ाते हैं
0: जी।
1: तो सोच संतोष, संतोषी होना चाहिए आदमी को, जो अपना एफर्ट करें, प्रयास करें किसी काम को, योग को करें तो योग पूरा करें, और उसमें जितना उसको मिल जाए उसी में संतुष्ट होना चाहिए, न कि अपरिग्रह के लिए आप जोर लगाएं कि नहीं मेरे को तो इतना मिलना ही चाहिए
0: जी,
1: ऐसा नहीं होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। तप, उसको तपस्वी होना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं, प्रकृति के जो नियम बना रखे हैं उसको मान करके, उनको आत्मसात करके, जैसे भाई अग्नि का स्वभाव है जलाना
0: जी,
1: और पानी का स्वभाव है ठंडकता, शीतलता प्रदान करना, ऐसे ही नेचर के साथ हम छेड़छाड़ ना करें,

0: उसको नेचर के अनुसार अपने जीवन को यापन करें
1: जी,
0: ताकि हमारा जीवन सुखमय हो। नियमा और हमें नियम के तहत
1: अनुसार कार्य करना चाहिए,
0: जीवन यापन करना चाहिए।
1: जी,
0: आसन यम नियम के बाद में आते हैं आसन, शिथिर सुखम आसन।
1: जी,
0: आसन में जैसे भाई कईयों को शुगर की बीमारी हो जाती है,
1: जी
0: शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी आजकल अक्सर बहुत ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ में हम जो हमारी आते होती हैं इंटेस्टिन जिसको बोलते हैं, उनकी ज़्यादा ज़्यादा योगाभ्यास करवाया जाता है, तो उसमें मंडूक आसन का अभ्यास करवाते हैं। मंडूक आसन में करने से आपकी शुगर जो है कंट्रोल होती है, शुगर क्योर भी होती है।
1: जी, थोड़ा सा इसका बताएंगे किस प्रकार से किया जाता
0: है। मंडूक आसन जो है इसको हम वज्रासन में घुटनों के बल बैठते हैं
1: जी,
0: और वज्रासन
1: पैर मोड़ की, यानी कि हमारे पैर पीछे की तरफ और घुटनों पर बैठते हैं,
0: घुटनों पर बैठते हैं
1: जी।
0: तो मंडूक आसन में जो बैठते हैं और उसमें जो वज्रासन की स्थिति होती है
1: जी,
0: वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए, केवल एक आसन है ये, खाना खाने के बाद जो करने वाला आसन है वज्रासन। तो वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करके अपनी नाभि है, नाभि के नीचे
1: अंगूठे अंदर की साइड कर लें, और मुट्ठी बंद कर लें,
0: मुट्ठी बंद कर लें
1: जी,
0: और नाभि के नीचे लगाएं दोनों हाथों को
1: जी,
0: और श्वास छोड़ते हुए वज्रासन में सामने की ओर झुके,
1: आगे झुक जाएं,
0: हाँ आगे झुके
1: जी,
0: और श्वास छोड़ते चले जाएं
1: जी।
0: श्वास छोड़ते चले जाएंगे तो श्वास जब आपको लेने की इच्छा हो
1: जी,
0: तब धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आए
1: जी,
0: ये एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया को 21 बार करें
1: जी,
0: न्यून से न्यून 3 बार करें, तो 21 बार जब करेंगे तो उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा
1: जी।
0: और एक स्वामी जी कहते हैं कपालभाति
1: जी,
0: कपालभाति से भी इसका पेट का अभ्यास ज़्यादा होता है तो उसे शुगर जो है ना कंट्रोल होती है
1: जी।
0: ये आसन है, ऐसे ही जो ना बहुत सारे भाइयों को जो 55 से एज के ऊपर हो जाते हैं
1: जी,
0: उनको प्रोस्टेट की दिक्कतें हो जाती हैं,
1: गदूद की जी,
0: प्रोस्टेट की दिक्कतें हो जाती हैं
1: जी,
0: तो वो बड़ी दुखदाई होती हैं, पेशाब जो है वो रुक करके आता है, खुल करके नहीं आता, बार बार जाने की इच्छा होती है
1: जी,
0: तो उसमें हम बटरफ्लाई करवाते हैं
1: जी,
0: तितली आसन जिसको बोलते हैं
1: जी,
0: वो बड़ा कामयाब है और जिन्होंने भी किया है वो बड़े सुखी हैं
1: जी,
0: क्योंकि मैं कम से कम सैकड़ों आदमियों से ऐसे मिला हूँ
1: जी,
0: जो मेरे पगड़ी को देख करके आते हैं भाई ये तो उम्र भी काफ़ी है और ये अब तो स्वस्थ है और अच्छे आसन करता है, मयूर चाल भी चलता है दोनों हाथों पे
1: जी,
0: और उसका उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और वो मेरे पास आकर के बड़े प्यार से पूछते हैं, मेरे को भी बताने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं उनको यही बताता हूँ, देखो भाई ये ज़्यादातर जो है ना कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है, पानी की कम पीते हैं
1: जी,
0: जानकारी कम है, सोचे इच्छा नहीं है तो क्यों पिया
1: जी,
0: जबकि पानी की मात्रा हमें हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा है
1: जी,
0: तो वैसे हमें पानी ज़्यादा मात्रा में हमें पीना चाहिए, फिर ये दिक्कतें नहीं आती
1: जी।
0: कई बार हम अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, पानी तो खूब पीना चाहिए, सर्दियों में हल्का कुनकुना पी लें
1: जी,
0: और गर्मियों में नॉर्मल पानी पिए, मटकी का पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, तली हुई चीज़ें ना खाएं
1: जी।
0: मैदा है, 3 जहर बता दें, सफ़ेद जहर है, एक तो सफ़ेद नमक, मैदा और चीनी, ये इनसे बचें। आपको नमक सेंधा नमक का यूज़ करें
1: जी,
0: प्रथम नमक सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजवान, सफ़ेद नमक है सागरी जो है जहर समान। तो ये सूत्र बना रखे हैं जो हमें योग शिविर में अपने साधकों को और जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको बताते हैं
1: जी। आपने जिक्र किया तितली,
0: हाँ
1: उसका तो ये किस प्रकार से किया जाता है?
0: तितली आसन जो है सीधे बैठ करके दोनों पैरों को एड़ियों को और तलवों को मिला लेते हैं
1: जी,
0: वीरासन टाइप में बनाते हैं और दोनों हाथों से उन पंजों को पकड़ते हैं सीधे बैठ करके
1: जी,
0: और तितली जैसे ऐसे पैरों को ऐसे मारती है ऐसे जी, तितली की तरह पैरों को फैलाते हैं, उससे जो ये हमारी जंघा वाला जो एरिया है वो स्ट्रोंग होता है और वहाँ की एक्सरसाइज हो जाती है
1: जी। यानी अपने पैरों को अंदर की तरफ मोड़ लें,
0: हाँ,
1: और जो तलवे हैं
0: तलवे
1: को आपस में मिला लें,
0: एडी को आपस में मिला लें,
1: मिला लें बिल्कुल, जिस तरह बैठने की स्थिति होती है
0: उसमें
1: तलवे की,
0: हाँ उसको तितली आसन बोलते हैं,
1: और उसको वो जो अंगूठे हैं
0: हाँ,
1: उनको पकड़
0: ले,
1: पैर जो हमारे घुटने जो हैं उनको ऊपर नीचे करें,
0: ऊपर नीचे ऐसे करें
1: जी,
0: फैलाएं ये तितली आसन बोलते हैं, इसको बहुत ही बढ़िया आसन है और इसको करने में किसी को तकलीफ भी नहीं होती। इससे है कि जिसको एडी में दर्द है, कईयों को एडी में दर्द होता है, झनझनाहट होती है एडी में, अब भाई झनझनाहट हो रही है और ये तो मेरे को तो ऐसे नहीं है, तो वो भी इससे ठीक होता है। प्रोस्टेट ठीक होता है इससे, फस्टूला है आपका, भगंदर है, ये सारी बीमारियां उससे क्योर होती हैं। और इसमें हम जो जिनका योगाभ्यास ठीक है, अभ्यास ठीक हो गया, उसको सुप्त सुप्त वज्रासन भी करवाते हैं हम उसको। सुप्त वज्रासन करवाने से और उसा उसमें अच्छा हो जाता है। और इसी प्रकार से हम प्राणायाम भी करवाते हैं आसन के साथ साथ में, जो हमारे प्राणायाम से जो है हमारी बहुत सारी जो शरीर की व्याधियां हैं वो ठीक होती हैं। जैसे हम अनुलोम विलोम करवाते हैं
1: जी,
0: ये प्राणायाम है। देखिए प्राणायाम के विषय में ऋषि ध्यान सत्यात प्रकाश के समुलास में लिखते हैं
1: जी,
0: बाह्य अभ्यंतर विषय से भी स्तंभवर्ती चतुर्थ है। चार प्राणायाम ऋषि ध्यान बताते हैं
1: जी,
0: लेकिन हम यहाँ जो अभ्यास देखते हैं आजकल के, जैसे भाई पतंजलि की तरफ से आते हैं, योग साहित्य योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं
1: जी,
0: तो उनमें जो अभ्यास है प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, आपका उज्जयी है, उद्गीत है, प्रणव है, ये प्राणायाम विशेष करके हैं। गर्मियों में जैसे शीतली और शीतकारी है
1: जी,
0: ये टोटल प्राणायाम है हमारे। तो उनमें एक है अनुलोम विलोम
1: जी।
0: अनुलोम विलोम जो है इसमें आप शिथर सुखम आसन, सुखपूर्वक जिसमें आसन बैठते हैं, आलती पालती मार के बैठते हैं
1: जी,
0: वो भी शिथर सुख आसन है। कई पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं तो पद्मासन लगाकर बैठ जाएं, और नहीं बैठ सकते, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको घुटने जो है रिप्लेसमेंट हो गई है, वो नहीं बैठ पाते, तो कुर्सी पर बैठ करके भी इसको किया जा सकता है। इसमें जो है दाई नासिका को जैसे ऐसे अंगूठी से दबा दिया,
1: आरंभ दाहिना नासिका से,
0: हाँ दाही नासिका, बाई नासिका से प्राणों को अंदर लेते
1: जी।
0: इससे हमारी ये ईड़ा और पिंगला, ईड़ा पिंगला यानी कि चंद्र और सूर्य
1: जी,
0: सूर्य स्वर दाएं तरफ और चंद्र स्वर बाएं तरफ, बीच की नाड़ी हमारी सुषुम्ना होती है
1: जी।
0: तो ये जो बाएं तरफ से जब हम सांस लेते हैं तो ठंडी वायु हमारे अंदर जाती है
1: जी,
0: ऐसे
1: जी।

0: तो भैया ने ये तो सुनी बातचीत योग संबंधी, भाई कितना ज़रूरी है योग करना और बहुत से ऐसे कारण हैं भाई, जब हम योग करेंगे तो जो हमारी जो शारीरिक बीमारियां हैं वो भी कम होंगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा। भाइयों जो ग्रामीण संसार कार्यक्रम है उसका समय समाप्त, सुरेंद्र भाई ने जा जद्दू सारे बाण भैया ने राम राम।
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते

0: 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
1: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
0: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
1: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
0: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडूंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहाँ मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो ना केवल जो स्काई वॉक वहाँ पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज़्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहाँ पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में, तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहाँ जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
0: आपने जैसे कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
1: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, ना केवल भारत के लिए, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज़ हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो हैं, इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
0: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में, और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
0: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है, और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है, और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
1: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो है एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं, और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए।

0: and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, Purvottar Kshetra Vikas Mantralay ka आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं.
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में. माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में हमें शामिल हुए थे. और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था. पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आइए. साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है. अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है. हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है. हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में. तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है. तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड व्हेन दे डू दैट दे ऑल्सो रिटेन देयर यूनिक आइडेंटिटी.
1: थैंक यू सो मच सर.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया.
3: दिस इज आकाशवाणी. इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII. Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war and now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco. And it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.
4: Mr. Mukundan, my first question to you, how do you assess the Indian economy of last 12 years?
5: So I think a lot of positives happened. And if I were to say, what are the way I would put sort of contextualize what has happened? You've already given the environment. There were challenges like COVID. External environment is very volatile. There's a challenge of AI coming in. What I think we have achieved is to have a more frictionless economy. There is less friction. And I'll explain what I mean by that. The whole digital payment, Jan Dhan, Jam Trinity, if you really look at it, it has reduced the friction in the economy. Also, the GST, for example, it's a landmark reform. It has ensured that, again, the friction in transaction of goods. If you recall, in the past, trucks would be waiting at state borders for hours. Today, actually, you can reach any part of India and has reduced logistic costs. I think the first F which they have achieved is to get to more frictionless economy.

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले
1: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में, फिल्म तुम बिन से। इस गीत को लिखा है फैज़ अनवर ने और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। इस गीत में को गाया है कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू ने। इस गीत को लिखा है महबूब ने और संगीत दिया है समाइल दरबार ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म कल हो ना हो से। इस गीत को गाया है सोनू निगम ने, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाज़ों में, फिल्म वारिस से। वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उत्तम जगदीश ने।

फिल्म वारिस से सुना अभी आपने ये गीत। स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 8:10 और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाएंगे मीका सिंह की आवाज़ में। फिल्म तमाशा से इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया है AR रहमान ने।

कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रैक से। आवाज़ें हैं विशाल मिश्रा और श्रेया घोषाल की। इस गीत को लिखा है गुरप्रीत ने और संगीत दिया है तनिष बागची ने।

फिल्म जीरो से सुना आपने कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। इस गीत को गाया अभय जोधपुरकर ने, इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को संगीत दिया अजय अतुल ने। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत को यहीं समेटते हैं। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आपको पहली गज़ल सुनवाती हैं विनोद कुमार सक्सेना की आवाज़ में।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी।

0: जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अगली गजल आपको सुनवाते हैं अमृतपाल सिंह की आवाज में।

0: इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 8:45 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 9 बजे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी।

0: from creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित

0: पहलों की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, "Technology can lead to progress only when it's democratized." Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
4: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at Viva Tech 2026 reflects this very vision.
3: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
4: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms, we are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
3: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion plans in India. Talking to Akashvani, CMA CGM Chairman and CEO Rodolphe Sardi said, India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding.
5: It's a great honor to meet with the Prime Minister to discuss about our development in India. We have been serving this market for many years and we are looking forward to expanding further. We are developing many initiatives, of which the building of 1700 TEU container in a shipyard in India. So we look forward to not only building those ships, but eventually building even more.
3: Our correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
6: Addressing the Viva Tech Summit in Paris today, the Prime Minister said technology must deliver for all and highlighted India's rapid digital transformation in areas such as financial inclusion, education, healthcare, and agriculture. He noted that UPI now powers nearly half of world's real-time digital transactions and is available in France also. Earlier in the morning, Mr. Modi met top French CEOs, Saint-Gobain, Mistral AI, and CMA CGM leaders, expressed confidence in India's growth prospects and announced plans for greater investments and collaboration in manufacturing, artificial intelligence, and green shipping. The Prime Minister is now attending a grand cultural program, Bonjour Modi, organized by the Indian community at the Sol Pleyel Center in Paris. Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Ministry of External Affairs today highlighted the key outcomes of Prime Minister Modi's visit to France. Briefing the media in Paris, Foreign Secretary Vikram Misri said the visit focused on three major pillars: trade, technology, and regional and international security. He said India and France jointly launched the Bharat Innovates initiative in Nice, providing a global platform for Indian deep tech startups. More than 120 Indian startups participated in the program. At Viva Tech 2026 in Paris, where India was the AI country of focus, the Prime Minister emphasized a human-centric approach to artificial intelligence and the use of technology for inclusive development. Foreign Secretary Misri also noted progress in trade negotiations with the United Kingdom, Canada, the European Union, and the United States. He said discussions at the G7 Outreach Summit focused on maritime security, the safety of seafarers, developments in West Asia, and enhanced international cooperation on health and economic challenges. Union Minister Amit Shah today chaired a series of review meetings in New Delhi and reviewed national roadmap to strengthen cooperative banking, organic products and cooperative exports. During the review of major cooperative banking initiatives, Mr. Shah took stock of the progress of various measures being undertaken to strengthen the cooperative banking sector through technology adoption, improved governance, cybersecurity, digital payments, common service platforms, and enhanced service delivery. Union Education Minister Dharmendra Pradhan today chaired a high-level review meeting to assess preparations for the NEET UG re-examination scheduled on Sunday. During the meeting, the minister stressed the need to maintain the highest standards of integrity, transparency and efficiency in the examination process. He directed all concerned authorities to remain vigilant and ensure all necessary arrangements for the free and fair conduct of the re-examination. The National Testing Agency, NTA, has released a message encouraging students to stay calm and trust their preparation with the NEET UG 2026 examination just 3 days away. The agency said that candidates have worked hard throughout the year and should now focus on resting well and giving their best in the examination. The testing agency also assured students that strong security arrangements

कार्यक्रम एक फिल्म से मैं आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आए दिन बाहर के से कुछ गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत पद किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: कार्यक्रम एक फिल्म से।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
3: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इसके लिए आगे बढ़ें कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1,00,000 करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया। अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में, उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा
2: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1,00,000 तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्य वर्ग भी स्थापित होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1,00,000 रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है,
3: कि 1,00,000 तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
2: बिल्कुल।
3: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1,00,000 से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12,00,000 रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
2: किया था। बिल्कुल,
3: ये देखिए ये दोनों चीजें जुड़ती हैं कि 1,00,000 रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1,00,000 रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती है, तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें, तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
2: बिल्कुल, जुड़े रहिए आशुतोष जी। एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी, स्वागत है आपका।
4: नमस्कार
2: अमन जी, अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
4: अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है,
0: तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है,
2: हाँ
0: उन्हें हायर करिए।
2: बिल्कुल
0: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज अ डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज अ फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक जा इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपये की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
2: आशुतोष जी, आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें दो नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए। हाँ
3: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहा है, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो दो और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा कर।

0: लेकिन उस बीच में प्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा, जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी, स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए, इसके बारे में भी बताएं।
2: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो AI के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज द अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर द करियर, मोस्ट ऑफ देम। आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू वन ऑफ द एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग द राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू द EPFO एंड द PM ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ you know, I being an employer, I got to know about this organization couple of months ago, but main iske bare mein aur deep janna chahunga, understand karna chahunga, and I would also want to understand how can we leverage it towards the young generation employment.
1: Bilkul, to aapko kya umeed hai is yojana se, jaise aap jaise jo ek tarah se main kahun ki desh ke yog vikas mein bhi aap jaise jo ek bahut mahatvapurna yogdan de rahe businesses एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए।
2: जी जी, सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक confidence building activities and mechanism hai, and it actually encourages companies to create more job, and it encourages young professional to enter into the formal workforce with confidence. Jab sarkar rozgar dene wale sansthanon ko samarthan deti hai to uska prabhav keval company tak simit nahi rehta hai, it actually creates a multiplier effect across families, communities and the broader economy. Every new employee supports a household, and every household contributes towards the consumption, and every successful business contributes towards the nation building. So basically, jitne bhi naye rozgar ko hum protsahan dete hain, alag-alag yojanaon ko ke tahat sarkar hume you know incentive deti hai as an employee, as an employer, ye kahin na kahin hamari society ki, hamari country ki contribution mein bahut mahatvapurna yogdan deta hai.
1: Bilkul. आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा, कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें, और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
0: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी, और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ें, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी नीलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही,

0: बिल्कुल तो
1: ये, और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
0: बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का
1: जी
0: एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: कंट्री वाइड

फिल्म जूली से सुना अभी आपने ये गीत। कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला पत्र हमारे हाथ में आया है चौधरीवास से। भेजने वाले हैं राजू अग्रवाल, केशव, अलक, चरणदास और रेखा। जिला मुरादाबाद, ग्राम धूलापुर से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और ऋतिक। जिला कैथल, हरियाणा से पवन शर्मा, बाला शर्मा, रोहित, मोहित और भाविक शर्मा। मुक्तसर से बब्बू सिंह दीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशु। बठेना से ये हैं बालकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा। चटोदा सारागांव से सुजान वर्मा, सुहिद्रा, आयुषी और कृत वर्मा। ये पत्र है सादुल शहर से, भेजा है ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान ने। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शायना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी। आइए सुनते हैं इन सबकी फरमाइश पर सुरेश वादकर और साधना सरगम की आवाज़ में फिल्म कलाकार से ये गीत। इंडीवर के लिखे इस गीत को संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी ने।

0: फिल्म कलाकार से सुना अभी आपने ये गीत। श्रोताओं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मन चाहे गीत। मन चाहे गीत में अगला पत्र जो हमारे हाथ में है वह आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, सुनीता जैन और सुनीता शर्मा, कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़, गांव मटोर जिला कैथल से आप हैं रामदिया संजय टाक, अजय टाक, विजय, कृष्ण, गौरव, मुस्कान, पायल, तमन्ना, नीलमबोध, मीनाबोध और कृष्णा रामफल, अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द और राहुल। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म कर्ज से ये गीत। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला पत्र है धनोरी तेलीवाला से भेजने वाले हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आल्या और आयान, चनेटी बरेली से विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोधले और आरती जोधले, करनाल से आप हैं नरेंद्र तनेजा, देव कोमल और शिवम तनेजा, न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से ये हैं सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता और राजीव ढेंगड़ा, डोगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का, तन्मय, नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी गोस्वामी, निशा और तुलसी गोस्वामी, लोहा मंडी गंजडुडवारा से इकबाल सलमानी, आफाक सलमानी, फैज़ान, मोमिन इकबाल, रिहान इकबाल और इरम। आइए सुनते हैं हीरो फिल्म से ये गीत मनहार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। शब्द रचना है अनंत बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला पत्र है देवघर झारखंड से। भेजने वाले हैं मनोज केसरी, पूजा केसरी, महादेव केसरी, श्रद्धानंद केसरी और रोशनी केसरी। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश,

मुकेश कुमार साहू, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती, भव्या सारथी और सुषमा सारथी, नवागढ़ कटाई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। ये पत्र है दिल्ली शहर मोरीगेट से, भेजा है कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने। गांव लुदेसर से पप्पू राम गाट, संतोष, लक्ष्मीबाई, ललिता, रुचिका और जतिन गाट। अगला पत्र है पंखा रोड दिल्ली से, भेजा है पिंटू दीवाना, सतनाम कौर, हनी सिंह और राकेश सेठी ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से ये हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। चकला बाजार समाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल, हसमुख जिंदल और पूरा जिंदल परिवार। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में इन सब की फरमाइश पर फिल्म आस का पंछी से ये गीत। हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 10:40 और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं मनचाहे गीत। कार्यक्रम में पत्र लिखने के लिए एक बार पता हम आपको फिर से बता देते हैं। मनचाहे गीत द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी रोहतक, पिन कोड रहेगा 124001। आप इस पते पर पत्र लिखकर हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी फरमाइश को हम पूरा कर सकें। ये पत्र है गांव बिरौली जींद से। भेजने वाले हैं सुरेंद्र सांगवान, अंकित सांगवान और सचिन सांगवान। डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश सिवानीवाल, सौरभ सिवानीवाल और रमेश वर्मा। योगनगर पंजाब से नरेंद्र मेहता, वरेंद्र मेहता, गिरिराज मेहता, हनी मेहता और सिमरत मेहता। ये पत्र है महागौरी मंदिर खजूरी खास दिल्ली से। भेजा है पृथ्वी सिंह नेगी, सौरभ सिंह नेगी, गौरव सिंह नेगी और मिट्ठू और कुहू ने। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन, आरजू, अरमान, आलम और तस्नीम। रघुनाथपुरा से खत भेजा है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी ने। आइए सुनते हैं इन सब की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म हम दोनों से ये खूबसूरत गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जयदेव ने।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अगला पत्र है राजिम छत्तीसगढ़ से, भेजा है अनुल, अंजुलता, आदित्य और क्रिश श्रीवास्तव ने। अमरपुर पेंडरा से दीपक, रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दिशा और लंबी श्रीवास्तव। नयापारा भिराई से आप हैं बसंत सूर्यवंशी, सरोज, चंद्रकांत, पराची, टीयूषी। मलोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप, रौनकदीप कौर। वडाली देशमुख मध्य प्रदेश से आप हैं राजेश गोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिराबाई और सुनैना खोबरखेड़े। केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी, नीशु, देवू, पीहू, पाखी कौशिक। पुणे से आप हैं पंकज, आर्य, आदि, शैलेश, सोनम, धनुषपुरी, बीटे, वाड़ोदरे। ये पत्र है पिरदा कोरासी से, रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू ने भेजा है। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर आशा भोंसले और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म पड़ोसन से ये गीत। इस गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

कार्यक्रम में आखिरी पद जो हम शामिल करने जा रहे हैं वे आया है साउथ एक्सटेंशन से गुरमीत सिंह मीता ने भेजा है, बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज, खंडवा एमपी से विजय, कविता, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अनाया, सपना, शिवी और सलोनी, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील, हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी, बेमेतेरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी, गांधीबाग अकोला से आप हैं रमेश कटनकर और वैशाली, फतेहाबाद से बिट्टू मोहरवाला, गगन अमरपुरी, युवराज और भोविक, तोरनाला वाशिम से सुखदेव राउत, सच्चा खेड़ा से वेद बिहारी, बगावत यूपी से एहसान अली, भिलाई छत्तीसगढ़ से ये पत्र भेजा है अशोक, श्याम कुंवर, दीपक, प्रमिला और ज्योति ने, मटोर से ये पत्र भेजा है रामदिया, नीलम, अजय, विजय, तमन्ना, पायल, रामफल और धर्मवीर ने। आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं जब प्यार किसी से होता है फिल्म से ये गीत। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और रफ़ी की। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम मन चाहे गीत को यहीं समाप्त करते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार और ठीक 11:05 पर अंग्रेज़ी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है, जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है।

यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।